0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti. Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, उठ गए आप सब, बहुत बढ़िया। अब बताइए कल रात सोते वक्त क्या सोचा था, कल जल्दी उठूंगा ना। और सुबह हो गई तो लग रहा है कि 5 मिनट और मिल जाएं, यही तो हर इंसान की कहानी है। पर कोई बात नहीं, उठ गए हैं तो मुस्कुराइए, चाय बनाइए, मेरे साथ जुड़िए RM2 रेडियो मस्ती पर, राइज एंड शाइन पे। 5:09 हो चुके हैं, मैं हूँ आपके साथ पूनम। चलिए हंसी मजाक से सुबह की शुरुआत करते हैं, इंजॉय करते हैं अपने प्रोग्राम को राइज एंड शाइन, और इस समय आपके साथ है पूनम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पाँच बजकर 22 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और कह सकते हैं कि जो ये मॉर्निंग होती है ना, इसमें कभी कभी हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा सा बंद नहीं हो पाता, पूरी रात चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, क्योंकि काम का बोझ इतना होता है इस दिमाग पे, क्योंकि पूरा काम तो इसी ने करना होता है और इसे सिर्फ टेंशन रहती है। तो हम तो आपको बस इतना ही कहेंगे, 10 मिनट खुद को दीजिए, क्योंकि इसने कभी नहीं रुकना है, ये चलते रहना है। आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है सुबह सुबह, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है, थोड़ी अपने गले को वार्म अप करना है, थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, अगर आप चाय पी सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो, पर उसे अगर अवॉइड कर सके शुगर तो आप ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही नॉर्मल पीजिए जैसे एक गर्म पानी पीते हैं। वैसे ही जो मॉर्निंग है ना, इसमें जब गाने चलते हैं उसमें थोड़ी सी हमारी गप्पे शप्पे होती हैं, और आपको नंबर पता ही है, आपको हम अपने दिल की बात कहाँ कहनी है तो आपको पता है 5499124 पर, यहाँ पर कोई ना कोई आरजे होगा जो आपके दिल की बात को सुनता है। तो हम तो यही कहेंगे, मैसेज कीजिए हमें, और साथ में अपने दिन को जो है ना अपलिफ्ट करना है, सैड नहीं करना है, रोना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स होना है। अगर हो सके थोड़ी आइज़ की एक्सरसाइज कीजिए, जैसे ही आप आइज़ की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन आउट करेंगे, आपको लगेगा कि अरे कितना अच्छा है सब कुछ, आसपास सब कुछ ग्रीन ग्रीन लग रहा है, कुछ ड्राई ड्राई नहीं लगेगा।

0: ये जिंदगी है, बाकी थोड़ा सा जाओ अपने परिवार के करीब, देखिए वो भी सारे उठ गए होंगे, नहीं उठे तो सिर्फ उनको बोलो अपना ये वाला गाना सुनाना, और बोलना चलो सारे उठ जाते हैं। इंजॉय कीजिए गानों को, मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:30 हो चुके हैं दोस्तों, और आज हम बात करेंगे दो हस्तियों की, ऐसी हस्तियां जिनका आज जन्मदिन है। एक तो है हमारे फेवरेट प्रेम चोपड़ा जी। जी हाँ, बॉलीवुड के वो विलेन जिनकी बात ही कुछ अलग थी, बात ही कोई निराली थी। और उसके बाद है हमारी तनुजा जी, यानी कि काजोल की मदर। 23 सितंबर को जन्मे थे प्रेम चोपड़ा जी, और 1935 के लाहौर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। अब तो वो 90 साल के हो गए हैं, फिर भी अभी भी चलते हैं, एकदम वाइट और ग्लोई फेस है उनका। उनका खाना पीना इतना ज़बरदस्त है, बिल्कुल सिंपल फूड खाते हैं जो कि एक घर में रेगुलरली बनता है। और जबकि देखिए, इतने अच्छे सुपरस्टार रहे, चाहे वो एक्टर के रूप में हो, विलन के रूप में हो, फादर के रूप में हो, और कहते हैं कि दादा के रूप में भी आए हो, नाना के रूप में भी आए, और हर फिल्म में उन्होंने अपना एक अलग ही करेक्टर दिया। और उसमें सबसे ज़्यादा उनका नाम जो सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है, उनको आज भी कहा जाता है, प्रेम है नाम मेरा। क्या बात है, उनकी बात ही कुछ अलग थी, उनका स्टाइल ही कुछ अलग था। और तनुजा जी जो कि बहुत ही खूबसूरत, इतनी सुंदर, जिन्होंने इतना स्टाइल चेंज किया, जिन्होंने उनकी जो उस ज़माने में साड़ी पहनी जाती थी, और मुझे पता है उस ज़माने की अभी भी हमारी जो ऐसी लेडीज़ हैं जो उनको कॉपी करती रही होंगी, और उनका चमक धमक वाले कपड़े आज भी उनके पास कहीं ना कहीं मिल जाएंगे अगर ढूंढेंगे तो हम तो आपको यही कहते हैं कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत ही सिंपल और प्यारी रही, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बनाया है, तो आपके लिए भी हम यही कहेंगे। अभी आप

0: आपकी जिंदगी बस शुरू ही हुई है, ऐसे ही सोचिए चाहे आप किसी भी उम्र के हैं। इंजॉय कीजिए गानों को। और एक बहुत ही प्यारा गाना है तनुजा जी का इस मूवी में, मुझे लगता है कि आप सबको पसंद आएगा। इंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:40 हो चुके हैं. प्यारी सी डेट लग चुकी है 23 सितंबर 2026 बुधवार का दिन यानी कि वेंसडे. और जब ये टाइम आता है ना तो सबको एहसास होता है अरे किसका बर्थडे है. सब जाग जाओ. चलिए जी हम भी जुट जाते हैं आपके मैसेजेस के साथ में. इस समय हमारे साथ दे रहे हैं सूरज शर्मा साजदा जी अपने पूरे परिवार के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. ललित जी साथ दे रहे हैं USA से और अपने दोस्तों के साथ इन्जॉय कर रहे हैं. मालिनी डैरन श्वेता प्रिशा लोवेशा आपादू फैमिली साथ दे रही है और अपने पूरे परिवार के साथ में इंजॉय करिए. थैंक यू सो मच आप सभी का. आज बर्थडे है सुशील झांकी जी का. मामा शीला और सेतुल एंड रवि विशा की तरफ से बहुत सारा प्यार और विशेष. आज प्यारी मम्मी जी यानी अमृता बिचू जी का भी बर्थडे है. बेटा अंतिश आतिश और बेटी के की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस और बस उन्हें बोल रहे हैं कि शाम का इंतजार करो कुछ स्पेशल सरप्राइज है आपके लिए. क्या बात है भाई. थैंक यू सो मच. सरप्राइज देते रहिए. धनेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ जुड़े हुए हैं. रेखा निशा देवदोस्त फैमिली इंजॉय कर रही है. थैंक यू सो मच. टोनी जी साथ दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ सुबह जुड़ते हैं और उन्हें पुराने गाने थोड़े थोड़े पसंद है बट वो कहते हैं कि कोई 80s और 90s के चलाओ तो हम आपको यही बताते हैं. मॉर्निंग हमारी उनके साथ शुरू होती है जिन्होंने बॉलीवुड को शुरुआत से देखा. तो 60s 70s 50s के गाने चलते हैं. 60s 80s तक आते आते तो 6 बज जाते हैं. तो इन्जॉय कीजिए. पुराने गाने भी बहुत मज़ेदार होते हैं. सूरज राजन विमला पूनम उमेश सभी सरोज जी इन्जॉय कर रही हैं और इन्जॉय करते करते बस इतना ही कह रही हैं सबकी गुड मॉर्निंग अच्छी हो. मॉर्निंग अच्छी हो. पूरा दिन अच्छा रहे. थैंक यू सो मच. जयशन जी साथ दे रहे हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ में अपने परिवार के साथ में और इन्जॉय कर रहे हैं. आज प्यारे भाई का बर्थडे है यानी कि आज वो 60 इयर्स के हो चुके हैं राजेश चंडी जी और उनका पूरा परिवार उनको बेस्ट विशेस दे रहा है और बोल रहा है विशिंग यू क्या बताओ.

0: हैं सीधा आपकी राशि की तरफ। सबसे पहले
1: एरीज मेष राशि,
0: आज आपकी सूझबूझ किसी उलझे काम को सुलझा सकती है, किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आगे काम आ सकती है। अपनी बात कहिए, आज लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 4।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: आज घर की कोई पुरानी चीज फिर से काम आ सकती है। खर्च किए बिना भी कुछ अच्छे करने का विचार आएगा। किसी को पसंद आए आपकी और आपको याद करके कोई रोए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही उन्हें फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए जो आपके बहुत करीब हैं। हो सकता है कोई आपको बहुत मिस कर रहा हो। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 8।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: आज किसी सवाल का जवाब अचानक मिल सकता है। आपकी याददाश्त पढ़ाई या काम में बहुत काम मदद देगी आपको। किसी की दिलचस्प बात आपको सुनकर नए कुछ सीखने का दिल कर सकता है आपको। हो सकता है कुछ नया एडमिशन लेने का मन कर जाए और कहें कि वो इंसान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। लकी कलर बनेगा आपका येलो, लकी नंबर है 5।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: आज किसी की कही हुई अच्छी बात याद आएगी। घर में आपकी पसंद की कोई चीज़ घर में बन सकती है, माँ बना सकती है, वाइफ बना सकती है, बिटिया रानी बना सकती है, और किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपका दिन स्पेशली आपके फेवर में रहने वाला है। लकी कलर है वाइट, लकी नंबर है 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज कोई आपको एक नई जिम्मेदारी सौंप सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप छोटे हो तो आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट है। अगर वो इस तरीके से आपको कोई जिम्मेदारी देने वाले हैं तो उनका साथ ज़रूर दीजिएगा और जिम्मेदारी को बिल्कुल अच्छी से तरीके से निभाइएगा। आपके अनुभव से उनको फ़ायदा मिलने वाला हो सकता है, आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है आजकल की जेनरेशन को लेके, तो इसीलिए उनका साथ दीजिए, इंजॉय करते रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। लकी कलर बनेगा आपका रेड, लकी नंबर है 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज किसी छोटी गलती को सुधारने का मौका मिल सकता है। आपका बनाया हुआ कोई तरीका दूसरों को पसंद आएगा। दिन में कुछ नया पढ़ने या जानने का मौका मिल सकता है। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 6।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज किसी पुराने परिचित से अचानक मुलाकात हो सकती है। आपकी पसंद को लेकर कोई अच्छी बात सामने आएगी। किसी के साथ दिल खुलकर बातचीत करिए। हो सकता है आज आप कोई घर या कोई शॉप या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले हों, तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 3।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज आपकी नज़र किसी ऐसी बात पर जाएगी जो बाकी लोग भूल गए थे। काम में आपका अनुभव बढ़ेगा, आपको जिम्मेदारी दी जाती है और जो भी जिम्मेदारी दी है उसे दिल से अपनाइएगा, खुद को तैयार कीजिएगा उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। हो सकता है आपको उस चीज़ का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो पर आपको जिम्मेदारी मिल रही है, तो अपने आप को उस काम से ज़रूर जोड़िएगा। लकी कलर है बैंगनी, लकी नंबर है 7।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज कोई नया रास्ता या नई जगह देखने का मन करेगा। किसी दिलचस्प जानकारी से आपका दिन खास बनने वाला है। अपने किसी पुराने शौक को या किसी हॉबी को फिर से अपने साथ जोड़िए, चाहे वो जिम हो, चाहे कोई एक्सरसाइज हो या कोई साइकिलिंग हो, किसी भी तरीके से अपने आप को उस चीज़ हॉबी के साथ जो आपका पैशन था उसके साथ जोड़िएगा। लकी कलर बनेगा आपका ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज किसी पुराने प्रयास का अच्छा नतीजा मिल सकता है। आपकी एक सलाह किसी की जिंदगी को बना सकती है। किसी अधूरी योजना को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। लकी कलर बनेगा आपका ग्रीन, लकी नंबर है 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज कोई ऐसा विचार आएगा आपके दिमाग में जिसे लिख कर रखना चाहिए आपको। हो सकता है आगे चलकर आप उसके ऊपर कोई बिजनेस या कोई एक्टिविटी ज़रूर करने वाले हैं। आपका कोई छोटी सी चेंज आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ी चेंज के लिए तैयार कर रहा है। लकी कलर बनेगा आपका ब्लू, लकी नंबर है 5।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर मन खुश होगा। आपकी कल्पना से कोई नया काम शुरू हो सकता है। किसी की कही हुई प्यारी बात लंबे समय तक आपकी याददाश्त में याद रहेगी। हो सकता है आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा और खास होने वाला है। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 6। तो ये था आज का आपका राशिफल, एंजॉय कीजिए आपका शो।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार पूजा जी से। पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को मेरा नमस्कार। न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, शागुस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और ऑजी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगो गार्सिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। हालांकि इस बुनियादी मतभेद के बावजूद व्हाइट हाउस के प्रमुख ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ संबंधों और अच्छी समझ की सराहना की। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज दिन के 1 बजे के करीब पोर्ट लुइस पहुंचेगा। जहाज पर 9,000 मेट्रिक टन से अधिक पेट्रोल, 10,262 टन डीजल और विमानन क्षेत्र के लिए 15,500 टन जेट एवं मौजूद हैं। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर हैं और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालिक समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्वेन की

0: गुआंगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। और आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। और अब आखिर में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय शाम को बादल घिर आएंगे देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर, बाकी इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात को भी मौसम सुहाना रहेगा, हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से शाम के समय दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये फ्लैश न्यूज़ यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: On MBC Play and MBC.MU. Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:10 हो चुके हैं दोस्तों. आज है प्यारा सा दिन 23 सितंबर का और आज आपको पता है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है. जी हाँ, वो लोग जो हाथों से बात करते हैं, जो अपनी बात कह नहीं पाते, जिनकी आवाज़ सिर्फ उनके हाथ है, जिनकी भाषा है, जिनकी बात करने का तरीका है, जो इतने प्यार से बोलते हैं, वो दो इंसान आपस में बात करते हैं जिनको ये लैंग्वेज पता है और वो इतने आराम से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं. उनके अलग से बुक्स होती हैं, उनके अलग से लिखने का तरीका होता है, कई जगह उनके अलग स्कूल होते हैं. बट आपको पता है 70 मिलियन से ज़्यादा लोग साइन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. ये कोई रेशो कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है और हम सबकी ड्यूटी बनती है जिनको ये भाषा आती है, जिनके जो आसपास हैं ऐसे लोग, जो जिनके घरों में बच्चे हैं ऐसे, अगर आप उनको कहीं पे भी आज देखें, स्पेशली उनको एक बड़ी सी स्माइल दीजिएगा, उनको एहसास दिलाइएगा कि आपकी लैंग्वेज हमसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हम जब बोलते हैं ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं, बट ये वो लोग हैं जो कभी किसी को हर्ट नहीं करते, जिनको दिल से जोड़ के रखते हैं उनकी सिर्फ वो लैंग्वेज. तो हम तो यही बोलेंगे, इस स्पेशल डे को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा. ना जाने किसकी आपकी जो स्माइल है, ना जाने किसका दिन बना दे और एहसास उन्हें भी हो कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है. ये तो हमारी किस्मत है, हमें बोलने का एक एहसास मिला हुआ है. पर जो नहीं बोल पाते उनके लिए क्या, उनके लिए बस यही है आपकी मुस्कुराहट, आपका थोड़ा सा थैंक यू और उनको एहसास होना कि वो भी एक हमारी ज़िंदगी के एक हिस्सा है, एक पार्ट है और हमारी सोसाइटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हीरा है. तो हम तो यही बोलेंगे, इंजॉय कीजिए अपने दिन को, खूबसूरती से आगे बढ़िए, बिल्कुल किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा ऐसे ही प्यार अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए, अपने साथ जुड़े रहिए. इंजॉय कीजिए इस गाने को और अगर दिल करे तो ज़रूर डांस कीजिएगा.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.

0: Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: 6:27 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ, जहां पे आपके दिल के मैसेजेस पढ़े जाते हैं, जहां आपके दिल की बातों को सुना जाता है। तो चलिए जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीखा जी का परिवार। मीखा का आज बर्थडे है और मामा एंड पूरी फैमिली उनको विश कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं हमेशा लंबी उम्र पाओ और बहुत अच्छी बच्ची हो, हमेशा खुश रहना। और साथ में बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है राजीव जी के लिए, और जिन्होंने मैसेज लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बट इतना कहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ जाएँ तो दिन बन जाता है। पापा दीवान जी का आज बर्थडे है और पूरी फैमिली उनको विश कर रही है, और स्पेशली माधो फैमिली, और उन्हें कह रही है विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे डैड, और हमेशा ऐसी मुस्कुराते घर आया करो, अच्छे लगते हो। क्या बात है, विद्वाग विदेशी जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। रेशमा राम जतन जी का आज के पापा का बर्थडे है, पूरा परिवार उनको विश कर रहा है और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। आज बेटी विमी का बर्थडे है, पापा एंड होल फैमिली की तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज, उसके साथ में ही बर्थडे विशेज आ रही हैं रोशी सेसरन जी के लिए, और पूरा परिवार और फ्रेंड सर्कल उन्हें विश कर रहा है, और बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं, तो हमेशा खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे टू नील देव नंदन, पूरे परिवार की तरफ से बेस्ट विशेज आई हैं, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, पर अभी हम बस साथ में ही जुड़ेंगे आपके न्यूज़ की तरफ में। पर इतना छोटा सा एक गाना चलाते हैं आप सबके लिए, और विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल।

सुबह के 6:30 बज चुके। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं आज की सुर्खियां। मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द न्यूयॉर्क में, जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। शागोस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा चर्चा में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में इस समझौते को भयानक बताते हुए जिगोगाशा द्वीप के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज पोर्टलिस पहुंचेगा आज। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत सरकार कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है और

अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिम्युलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है।

0: चल रहा है। शागुस द्वीप समूह का संवेदनशील मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और ऑडी बरहाम के बीच हुई पहली आमने सामने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगुगासिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। हालांकि इस बुनियादी मतभेद के बावजूद व्हाइट हाउस के प्रमुख ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ अच्छे संबंधों और अच्छी समझ की सराहना की। इसका एक अंश पेश है।
1: President, are you going to support it? The deal to give away the Chagos Islands from the UK to Mauritius?
2: I don't support it. I think it was a terrible deal. They all of a sudden say they have ownership. Somebody has ownership that never showed up before after decades and centuries. It's strategically very important. We had to send the B-2 bombers back home to Missouri. It's amazing how strategic it is, and I think the Prime Minister is going to be looking at it.
3: Mm-hmm. Yeah.
2: It's a very important piece of real estate, militarily and strategically. Yes, right behind.
0: मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज दिन के करीब 1 बजे पोर्ट लुइस पहुंचेगा। जहाज पर 9,000 मैट्रिक टन से अधिक पेट्रोल, 10,262 टन डीजल और विमानन क्षेत्र के लिए 15,500 टन जेट एवान मौजूद है। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालिक समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। आद्रियन वालिया की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण।
4: कई महीनों की बातचीत के बाद मॉरिशस और भारत के बीच हुए नए समझौते का असर अब दिखाई देने लगा है। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले कई वर्षों तक देश में ईंधन की सप्लाई को सुरक्षित करना और मौजूदा अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच ईंधन की कमी के जोखिम को कम करना है। भारत से आई इस पहली खेप में 9,000 टन से ज्यादा पेट्रोल, 10,000 टन से ज्यादा डीजल और 15,500 टन जेट A1 शामिल है। हालांकि भारत से ईंधन की ये खेप ऐसे समय आई है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। भारत से पहली खेप पहुंचने से पहले ही पुराने समझौते के तहत मौजूद स्टॉक के आधार पर किए गए हिसाब से ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव दिखाई दे रहा था। अगर पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की बैठक कल होती तो पेट्रोल की कीमत 70.63 रुपये से बढ़कर 77.70 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी, यानी करीब 7 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं डीजल की कीमत 71.25 रुपये से बढ़कर 78.35 रुपये प्रति लीटर हो सकती थी, यानी करीब 7.10 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। हालांकि इन गणनाओं में भारत से आने वाली नई ईंधन खेप को अभी शामिल नहीं किया गया है, इसलिए अब ये देखना होगा कि इस नई खेप की खरीद किस कीमत पर हुई है और आने वाली पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी की गणना पर इसका क्या असर पड़ता है।
0: मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। जहां उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों में मतलब के आयात पर बात की गई, जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। इस बीच मॉरिशस की कंपनियों को अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने और चीनी मंडी में नए कारोबारी संपर्क स्थापित करने का अवसर मिला है। मंत्री माइकल सिक्यूएन को सुनते हैं, उनसे बात की उर्वशी भिखारी बंजन ने। विवरण अशिता रखो।
4: तेल के उत्पाद तथा कैन के खाद्य उत्पादों की कीमतों का अध्ययन किया जा रहा है और हमें लगता है कि ये लाभदायक होगा। इसके बाद बोर्ड एक निर्णय पर आएगा।

0: एसटीसी और सरकार प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लक्ष्य भी है, लेकिन सबसे जरूरी है स्थानीय स्तर पर पैदावार करें। तब तक मॉरिशस में प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगी। एक और सकारात्मक बात ये है कि हमारे मॉरिशन कंपनियों के लिए भी लाभदायक होगा कि भावी मंडियों में जाएं, जहां से वे अपने उत्पादों को खरीद पाएंगे। अतः मॉरिशन कंपनियों के निर्यात के लिए लाभदायक होगा। मैंने इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री से बात की है, ईडीबी को भी सूचित कर रहे हैं कि ये निर्यात और आयात के लिए देश के लिए फायदेमंद होगा।
1: ईडीबी के लिए बहुत बेनिफिक पर मॉरिशस, से पास इस इंपोर्ट में एक्सपोज।
2: भारत सरकार कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से वे सुरक्षित वातावरण में बंदरगाह से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का अभ्यास कर सकेंगे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके कौशल को मजबूत करना और बंदरगाह क्षेत्र में होने वाले बदलावों के लिए उन्हें तैयार करना है। कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानिदेशक गसन दो सामी को सुनते हैं, जिनसे बात की आशी बाचू ने। अशिता रघु का विवरण।
3: हम अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की मांग पर भारतीय सरकार एक सिमुलेटर दान कर रही है, जो अक्टूबर में मॉरिशस पहुंच रहा है। इसके माध्यम से बंदरगाह से संबंधित सिमुलेशन के लिए प्रशिक्षण कर पाएंगे। ऑपरेटरों के लिए भी जरूरत पड़े तो यही ट्रेनिंग देंगे। हम निवेश में विश्वास रखते हैं। डिजिटलाइजेशन के मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य यही है, 28 जनवरी उपकरणों के पहुंचने पर सब आधुनिक हो जाए।
2: जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 7 सितंबर को कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पोर्ट लुइस बंदरगाह के लिए नए माल हैंडलिंग उपकरणों में 2.7 बिलियन रुपए के निवेश की घोषणा की थी। ये परियोजना यहीं तक नहीं रुकती, इसके दूसरे चरण में कई नए उपकरण खरीदे जाएंगे। इस दूसरे चरण का पूरा वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। एक बार फिर कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से गसन दो सामी को सुनते हैं।
4: पहले चरण में समझाया गया तथा पूर्ण हस्ताक्षर भी किया गया है, जिसके लिए 2.7 बिलियन रुपए हासिल हो रहे हैं। दूसरे चरण के लिए एक पोत मेगामार्क्स 8 ओटीजी 8 रिस्क टैकर तथा 26 ट्रेलर इम्पैक्टर शामिल हैं, जिसके लिए पूर्ण फाइनेंसिंग भारतीय सरकार कर रही है।
2: जॉ कार्ल एलिजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के पद से इस्तीफा देने के बाद, इसलिए क्योंकि वो एफसीसी की जांच के दायरे में हैं। अब उनके कृषि भूमि के लीज समझौते पर भी रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। कृषि औद्योगिक मंत्रालय ने उन्हें 2 महीने की सख्त समय सीमा दी है, जी हाँ, सख्त समय सीमा, ताकि पोएटू पिमा में उन्हें दी गई जमीन पर खेती शुरू की जा सके। 24 अगस्त को किए गए निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि वहां अभी तक कोई खाद्य फसल नहीं लगाई गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि नवंबर की समय सीमा तक जमीन पर कोई काम शुरू नहीं होता है, तो इस भूमि का लीज रद्द कर जमीन वापस ले ली जाएगी। चलिए मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं, उनसे बात की शैली नियाबन ने।
5: Officier du ministère, il a visité et trouvé qu'il n'aurait pas fait faire. Tu donnes 6 mois, mais il y a une période de quoi dire, ok, parce que parfois les choses difficiles. Si dans les 2 prochains mois, n'aurait pas arrivé, la terre a pris le prix. Il y a plus qu'une époque qui s'en a et les mêmes règles du monde.
2: कृषि उद्योग मंत्रालय छोटे

0: किसानों को बीज और फलों के पौधों के उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इच्छुक किसानों के लिए दो कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम लौकी, पैचिस और खीरे के बीज उत्पादन से संबंधित है। इसके तहत 27 किसान शामिल हैं और क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड प्रोग्राम के अंतर्गत 80 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। दूसरा कार्यक्रम ताइसु और युक होपो किस्मों के लीची के पौधों के उत्पादन से संबंधित है। इसमें मात्र एक किसान शामिल है। उत्पादित मात्रा के आधार पर प्रत्येक पौधा लगभग 300 रुपये में बेचा जाएगा। बीज और पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इनमें अन्य किस्मों का या पौधों से किसी भी प्रकार के मिश्रण या मिश्रण से बचना भी शामिल है। कृषि उद्योग मंत्रालय की एग्रीकल्चरल सर्विसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर रुमेश सिंह बिहारी को सुनते हैं। उनसे बात की शबनीज उजीर ने, विवरण रजनी कर का।
1: They ensure keys with three-month standard and procedure can establish.
2: हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक स्टैंडर्ड हो, प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य हो, तब क्रॉप साइकिल के अंत में बीज खरीद सकते हैं, फल के जरिए बीज निकाल सकेंगे और इस तरह सीड प्रोडक्शन बीज उत्पादन बिजनेस में आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। लीची को लेकर भी वे अपने खेत में भोवें लगाते हैं, किस्म पर ध्यान केंद्रित, तब उनसे ये पौधे खरीदते हैं, जैसे कि पचीसों है, लौकी है। आसपास अन्य प्रकार की खेती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अन्य किस्म के वैरायटीज होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, अतः ये वैरायटी को कंटामिनेट भी कर सकता है, जैसे कि लेचुस भी है। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वैरायटी वो बो रहे हैं वही हम खोज रहे हैं, पास्यो है या फिर उकोपाओ। इस साल 27 खेतिहर हैं इन तीन सब्जियों के लिए, खीरा, स्क्वाश, पचीसों और लौकी। करीब 8 मिलियन रुपए निर्धारित हैं। लीची के लिए केवल एक ही वैरायटी को चुना गया है। 1,000 पौधे खरीदे जाएंगे, एक पौधे 300 रुपए में खरीदे जाएंगे, अर्थात 1,000 पौधे के लिए 3 लाख रुपए होंगे।
0: आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इसमें स्वास्थ्य को मात्र बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और जीवन शैली के संतुलन के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक जीवन शैली, पौष्टिक आहार, योग, ध्यान और औषधीय पौधों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन के अध्यक्ष डॉक्टर कोमल राधाकिशन हमें आयुर्वेद पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। उनको सुनते हैं। उनसे बात किया शीता रघु ने।
3: आयुर्वेद हमारे पूर्वजों के साथ मॉरिशस में आया। यह एक बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो वेदों पर आधारित है। यह चिकित्सा पद्धति में हमारे स्वास्थ्य की रक्षा तथा जब हम बीमार होते हैं उनकी चिकित्सा किस तरह से हम औषधियों, आहार विहार से करते हैं, इसमें बताया गया है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके दिनचर्या, ऋतुचर्या पर ध्यान देती है, जिससे आपका स्वास्थ्य हमेशा सुरक्षित रहे। आयुर्वेद के बताए हुए सिद्धांत के पालन करने से हमें आरोग्य प्रदान होता है तथा हमारे देश में कल्याण होता है।
0: मॉरिशस में आयुष की स्थापना भी हुई है और बहुत जल्द आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापना होगी। डॉक्टर कुमार राधाकिशन को सुनते हैं।
3: मॉरिशस में आयुर्वेद की प्रगति बहुत ही तेजी से हो रहा है। यहाँ पर अप्रैल से आयुष की नई अध्यक्षा प्रोफेसर पूजा सबरवाल कार्यरत है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, तथा आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण बहुत ही जल्दी होने वाला है। हम ये देखते हैं भी हैं कि हमारे सभी सरकारी अस्पतालों तथा प्राइवेट सेक्टर में भी आयुर्वेद की अच्छी तरह से प्रगति हो रही है। खास

0: और मेडिकल टूरिज्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी उत्सुकता जागरूक हुई है, जिससे जिसको हम कहते हैं लोगों के वेलनेस के लिए आयुर्वेद सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है।
1: विदेश में श्रीलंका की हाई कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। इन हमलों में 270 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। दोषी ठहराए गए लोगों में नफर मुलावी भी शामिल है, जिन पर अभियोजन पक्ष ने आत्मघाती बम धमाकों की साजिश का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। वहीं 9 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 3 चर्च और मतलब गिरजाघरों और 3 लग्जरी होटलों में किए गए इन सिलसिलेवार धमाकों को 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका में सबसे घातक हमले माना गया। मृतकों में 45 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अब आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय ऊंचाइयों पर रह रहकर कुछ वर्षा होगी, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। सिवाय शाम को देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटो पर बादल कुछ घेर आएंगे। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। रात को भी मौसम अच्छा रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से शाम के समय समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26 साहली इलाकों पर, न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ। सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा।

देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर, मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। न्यूयॉर्क में कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है, जहां शागुस द्वीप समूह चर्चा का विषय। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्ट लुइस पहुंचेगा। ये खेप लगभग 3 सप्ताह की आपूर्ति के बराबर है और एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाई कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई। इन हमलों में 270 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। 6:52 हुए हैं, हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ हमें पूरा समाचार विभाग और फ्रेंच विभाग, रेडियो फ्रेंच विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

Quand on va Kwame, ये शोक समाचार फिर से सुनिए. कौते वाक्वा में, कौते वाक्वा में 92 साल की 92 years old बीबी हवा मुसन पैदाशी नाम कुसबाली इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान कौते वाक्वा से उठाकर दफनाने के फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे 2 PM. दयालेन सेंटिलिया में 57 साल के 57 years old श्री भूषण सुकी जिन्हें लोग इंदिवर नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी रेशमा सुकी के मकान दयाल लेन सेंटिलिया से उठाकर सेंटिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2 PM. रॉय रोड रिवियानुआ में 66 साल के 66 years old श्री लक्ष्मी मोसुकू जिन्हें लोग फुन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थ ही आज दिन के 11 बजे इनके मकान रॉय रोड रिवियानुआ से उठाकर रिवियानुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 11 AM. कांकारोल केन्या में 75 साल के 75 years old श्री आनंद देव सुदू जिन्हें लोग सुंदर पेशिया नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनके अर्थ ही आज दिन के 1 बजे इनके बेटे शक्ति सुदू के मकान कांकारोल केन्या से उठाकर प्लेन मायाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 1 PM. गिरत सिंह लेन लाल माटी में ड्रीम प्राइस सुपरमार्केट के पास 75 साल की 75 years old श्रीमती धीरज सिंह पुष्मावती जिन्हें लोग विजया नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे संजीव धीरज सिंह के मकान गिरत सिंह लेन लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 11 AM. नंबर 110 ला रू ला पे प्लेन वेट में 77 साल की 77 years old मिसिज फाजिला मुदाबुकस पैदाशी नाम जुमन और जिन्हें लोग फाजिला नाम से अधिक जानते थे इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा आज सपहर के तीन बजे इनके मकान नंबर 110 लाहौल पे प्लान बेहतर से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए रिश्तिया की मस्जिद ले जाया जाएगा. फिर वहां से दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रस्तान. फ्यूनरल टूडे 3 PM. नंबर 56 ब्लूडो स्ट्रीट रोज हिल में 30 साल के 30 years old जनाब अजमल अब्दुल रहमान इलाही बकस इंतकाल कर गई है. इनका जनाजा आज दिन के 12 बजे इनके मकान नंबर 56 ब्लूडो स्ट्रीट रोज हिल से उठाकर नमाज जनाजा के लिए रजहिल की सुनी मस्जिद ले जाया जाएगा. फिर वहां से दफनाने के लिए सैमाउतें का कब्रस्तान. फ्यूनरल टुडे 12 PM. नंबर 357 मिनाजरी कासी पोर्ट लुइस में नंबर 357 गली मिनाजरी कासी पोर्ट लुइस में 49 साल के 49 years old श्री भवन सिंह गोपुल जिन्हें लोग भवन सिंह नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके भाई महेंद्र सिंह गोपुल के मकान 357 गली मेनाजरी कासी पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट जॉर्ज पेटिट रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे 2 PM. जिलबेर जैसन स्ट्रीट उकुले में 52 साल की ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए. जिलबेर जैसन स्ट्रीट उकुले में 92 साल की 92 साल की 92 years old श्रीमती गौरी

गनु, श्रीमती गौरी गनु, पैदाशी नाम पदिया और जिन्हें लोग पर्वत नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके बेटे तहसन गनु के मकान जिलबिया जैसन स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अलीब्रियन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। Avenue Rose Verdeme, 64 साल की 64 years old श्रीमती रंभावती अनमोल पैदाशी नाम दिगंबर और जिन्हें लोग कविता नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनके पति धनेश अनमोल के मकान Avenue Rose Verdun से उठाकर से कॉन्स्टेंस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। स्कूल इन बुनाके में 65 साल के 65 years old श्री नारद केंटल जिन्हें लोग राजेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के पौने बारह बजे इनकी पत्नी शमिला केंटल के मकान और SA स्कूल ने बोनाकई से उठाकर लावंचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:45 AM। बालिसों रोजबेल में 90 साल की 90 years old विधवा सुपमा दोरास्वामी की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह दस बजे इनके बेटे राजन दोरास्वामी के मकान बालिसों रोजबेल से उठाकर यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। बासठ साल के 62 years old श्री धर्मराज ओजायब जिन्हें लोग चाहोस संजय दत्त नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी बाद में इनके मकान बाहन लेन बिलिया रिविया सेश से उठाकर लालूसी बिल्डिंग बिलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। कांपुरन पुस दे फ्लाक में 61 years old श्री विजय आनंद गजाधर जिन्हें लोग भीम नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे अविनाश गजाधर के मकान कांपुरन पुस दे फ्लाक से उठाकर लावंचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। डोमेन दे मूलर गुडलैंड्स में 55 साल की 55 years old श्रीमती देवी गोविंदन पैदाशी नाम मुकैन और जिन्हें लोग मालिनी नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे युवेन गोविंदन के मकान डोमेन दे मूलर गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मोदेजिया वाक्वा में 39 साल के 39 years old श्री रिकेश बिला की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी आरती बिलाव के मकान मोदेजिया वाक्वा से उठाकर फिनिक्स श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM। और एवेन्यू मोते लाबुट में 78 years old श्रीमती विल्डिया गोरीबा पैदाशी नाम चेदी और जिन्हें लोग जेल नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान अवेन्यू मुताई लाबुट से उठाकर सेंट जोज ले सालिन
किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टुमारो एट

0: व 11 एएम। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: वेलकम टू RM2
3: रेडियो मस्ती
4: नॉर्थ साउथ
3: 103.5
4: ईस्ट वेस्ट
3: 96.4
4: सेंटर
3: 99.4
2: RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: A very good morning. सुबह के 7:04 हुए हैं.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: सुबह के 7:10 हो रहे हैं और बस आ गई आपकी दोस्त विदिता साथ देने के लिए. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. थैंक यू सो मच पूनम.
4: वेलकम.
3: और राइट, तो पूनम हमसे पहले आपके साथ थी और वो इधर ही घूम रही है, कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो इधर ही रहूँगी. और बस आप सबों का वेलकम है. आई होप इट इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे. हमने फील किया कि अभी जो है वक्त थोड़ा सा थम सा गया था. ऐसे में रोज़ हम भागते थे मॉर्निंग में, अभी पता नहीं क्यों लगता है कि जब गर्मी का सीज़न शुरू होता है ना तो वक्त जैसे रुक रुक के चलता है. कहते नहीं थोड़ा और मैं आप लोग अभी रो रहे थे ना कि बहुत सर्दी है, तो अभी हम आपको एकदम अच्छी तरह से आपको वार्म देंगे, थोड़ी गर्मी देंगे, गर्मा के जाएंगे आपको. लेकिन आपको गर्म नहीं होना, आपको हमारी तरह होना है कूल, ठंडा ठंडा, और हमारे साथ हमारे साथ मॉर्निंग बीट में साथ देना है. तो चलिए गुड मॉर्निंग वेलकम, आपके साथ रहूंगी मैं विदिता 9 बजे तक.
5: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: अरे वाह, सोनू निगम के सारे फैंस खुश हो गए होंगे। सुबह के 7:26 हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, मैं वेदिता आपका मॉर्निंग बीट में स्वागत करती हूं। और चलिए यहां पर हम बात करते हैं, अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा तो होगा जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं या फिर जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और डेफिनेटली यहां पर ऐसे लोग हैं जो बहुत ही प्यारे हैं, उनको अगर आप सरप्राइज करना चाहते हैं तो लुलु हाइपर मार्केट की तरफ से हम एक वाउचर ले आए हैं। उनको हैप्पी बर्थडे गाएंगे भी उनके लिए और फिर उनको वाउचर भी देंगे। तो आप जल्दी से उनका फोन नंबर, जी हाँ उनका फोन नंबर हम तक पहुंचाएं और उनका नाम भी, ताकि हम उन्हें कॉल करें और सरप्राइज कर सकें।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: मॉर्निंग में हम भी चाहते हैं कि किसी का दिन जो है खुश कर दे, उनको हैप्पी कर दे और पूरा दिन जो है वो हमारे इस मूड में रहे. जैसे कि हैप्पीनेस जो होता है ना वो बता के नहीं आता, लेकिन कभी कभी फ़ोन जब बजता है तो

0: तो लोग खुश हो ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इनसे, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। और आपका नाम है विश्वान, राइट?
1: जी हाँ।
0: विश्वान दुमा जी, आपको तो पता चल ही गया होगा जिस तरह से आप स्माइल कर रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि किसने कॉल किया है। हंस रहे तो मतलब कि कंफर्म हो गया। ऑलराइट, तो अभी आप काम पर हैं, घर पे हैं, कहाँ पे हैं?

0: फ्रॉम रेडियो मस्ती।
1: तो चलो भाई, रेडियो मस्ती की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और मैं आपको बता दूं, आपको लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर भी मिल रहा है। अब आप घर पे हैं तो आ जाइए एमबीसी अपने वाइफ के साथ, अपने आईडी कार्ड के साथ। 9 बजे से 3 बजे के बीच में आपको आना है आज, नहीं तो आप कल आ सकते हैं, लेकिन आज आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लोलो हाइपरमार्केट कोशिश करते हैं कि जो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका दिन स्पेशल हो, खास हो। तो ये वाउचर आपको मिल रहा है एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपकी पूरी फैमिली की तरफ से। ठीक है,
2: थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
1: ओके जी, गुड डे, बाय बाय, हैव अ ब्लास्ट,
2: थैंक यू, बाय बाय।
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: Nous tenir à rappeler tout ban compagnie et particulier qui apporte Frisidaire qui paye une moratoire pour nouveau règlement Energy Efficiency Management Office EEMO peut finir le 30 septembre 2026. À partir le 1er octobre 2026, tout ban Frisidaire qui pour présenter à la douane pour dédouanement pour bien répondre à ban norme performance énergétique. La douane pas pour autorise dédouanement aucune cargaison si de pena un certificat qui émet par EEMO pour sa modèle Frisidaire qui peut apporter là. Pour éviter tout désagrément, nous conseillons d'enregistrer ban modèle Frisidaire qui peut apporter avec EEMO au plus vite possible. Pour plus d'informations, contactez EEMO au 206 80 70.
5: Dans quelques heures, les machines du loto feront leur show. Approximativement 23 millions de roupies au loto plus et environ 25 millions de roupies au loto. 25 millions de roupies au loto. Il y a toujours quelqu'un autour de vous qui a besoin d'un petit coup de pouce. Si vous le pouvez, faites un don. Chaque petit geste aujourd'hui fait une grande différence demain.
6: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
3: RM2 Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए समय हो गया है सुबह के 7:40 अरविंद आ गए हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड से खबरें लेकर। कल का दिन तो बहुत खास बहुत स्पेशल है। चलिए जानते हैं कि अरविंद हमारे लिए क्या अपडेट लेकर आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। कल से UEFA नेशंस लीग के मैच खेले जाएंगे। ग्रुप वन में अंडोरा माल्टा, ग्रुप टू में नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच मुकाबला, सर्बिया ग्रीस लेश्टेनस्टाइन लिथुआनिया, ग्रुप थ्री में ऑस्ट्रिया इजराइल कोसोवो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ग्रुप फोर में नॉर्वे डेनमार्क पोर्टुगल वेल्स। इंग्लैंड की टीम ग्रुप थ्री में है। कल इस शनिवार को सैटरडे मैच स्पेन के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के खिलाफ तगड़ा मैच इंग्लैंड के लिए वेम्बले में। रियल मैड्रिड और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियान एम्बापे ने कहा कि साल 2016 में जब वो 18 साल का था और मोनाको में खेलता था, तब वो लिवरपूल के लिए साइन करने के एकदम करीब था। उसकी मां अनफील्ड रोड आई हुई थी। अनफील्ड रोड में आकर यर्गन क्लॉप से मिलकर वो बहुत खुश हुई और दोनों बहुत पसंद आए। वो चाहती थी कि एम्बापे लिवरपूल में आए। उसके लिए लिवरपूल ने एक प्राइवेट जेट फ्रांस भेजा था। एम्बापे का पूरा परिवार प्राइवेट जेट में आया, वहां बातें हुई, खूब खाया पिया, पर किलियान एम्बापे को मना नहीं पाए। एम्बापे खेलना चाहता था पेरिस सेंट जर्मेन में और वही हुआ। आर्सेनल के बॉस मिकेल आर्टेटा को नए कॉन्ट्रैक्ट में नई डील दी गई। इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट सैलरी 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से कहीं अधिक और 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग बोनस। आर्सेनल को चैंपियन बनाकर आर्टेटा अब यहां अपनी डिनास्टी, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है। ट्रांसफर बाजार से कुछ खबरें। मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस के लेफ्ट बैक टैरिक मिचेल के पीछे हैं। दोनों टीमों में लेफ्ट बैक पोजीशन में कमजोरी है। UEFA वीमेंस चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच कल खेले गए। मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख के बीच मैच ड्रॉ। इंटर मिलान ने हैकेन टीम को 1-0 से हराया। आर्सेनल की जीत HB कुछ टीम के खिलाफ। यूवेंटुस 1 बेनफिका 2, रियल मैड्रिड 1 पेरिस FC 1। इधर पेरिस सेंट जर्मेन 1 रियल मैड्रिड 1 पेरिस सेंट जर्मेन 1। आज चेल्सी ऑस्ट्रिया वियन, बार्सिलोना पेरिस FC, सर्वेट लियोन और OHL AS रोमा। एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला गोल्ड मेडल। वीमेन्स क्रिकेट फाइनल में भारतीय लड़कियों ने श्रीलंका को हराया। भारतीय टीम के 216 रनों के जवाब में श्रीलंका की महिला टीम केवल 69 रन पर ऑल आउट हुई। 2023 के बाद 2026 में भी एशिया की चैंपियन टीम बनी भारतीय टीम। मेंस टीम इंडिया भी जापान में है। एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक वन ऑफ वार्म अप मैच खेला गया जापान के खिलाफ। केवल 5 ओवर का मैच रहा। केवल 2 रनों से टीम इंडिया जीत पाई। टाइट मैच था। फाइनल ओवर में एक वाइड ओवरटर्न किया गया और भारतीय टीम की जीत हुई। इधर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे वनडे इंटरनेशनल मैच में पहला मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है। बीच सोको की बात करें, कान 2026 के प्रीलिमिनरी राउंड में कल मॉरिशस

0: इसका सामना अंगोला से होगा। ब्लूबे अरेना में मैच खेला जाएगा। मैच इस रविवार इस संडे को के लिए निर्धारित था पर अंगोला की टीम फ्लाइट मिस कर गई थी। साइकिलिंग, कनाडा में लग रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिले मिक्स्ड में हमारी टीम मोरिस एमसेबे 12वें स्थान पे आई, 12th पोजीशन। अलेक्जेंडर मेयर, डैनियल योनहिन और जेरेमी राबुद लड़कों में और लड़कियों में कामिल शास्तो, लुसी लाजेस मेयर और किम्बर्ली लेकू डेब्यू पियना थी। पहला स्थान इटली को गया। इधर कुसाफा अंडर 20 में मॉरिशस का सफर पूरा हुआ एक हार के साथ, लगातार तीसरी हार। इस बार मोजाम्बिक ने बेबी क्लूबेम को 5-0 से हराया। एक अच्छा अनुभव हमारे खिलाड़ियों के लिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे चलकर बहुत कुछ कर पाएंगे सरजू गौरीशंकर के साथ। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आई विल कैच यू very soon. Till then, have a wonderful time listening RN2. Take care. Bye-bye.
1: Thank you so much, Arvind.
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives.
2: RM2
4: Radio Musty.
2: Feel the

0: आइए चलिए यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं नील देवनंदन को जो रहते हैं कैथोस से, उनकी मम्मी नताशा, उनके पापा रवि, उनके भाई आयन की तरफ से, एंड साथ में बेटी विमी को हैप्पी बर्थडे फ्रॉम पापा संजीव, और साथ में हम मामा दीपा, सिस्टर हैं केशना एंड नानी, उनके मामू, उनकी दादी एंड सनातन फैमिली की ओर से विशिंग हर वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे टू रोशी सीसरान, और आप रहते हैं बुड में, आप के लिए विशेज आए हैं सलोनी, ललिनी और वीना, अनुषा, कुशल, विकास, बीला, सभी आपको विश कर रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. तो साथ में यहाँ पर नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम मिही कादुखी के लिए, उनकी मम की तरफ से, और साथ में है निष्ठा ऑफ शिम ग्रिंगे. चलिए अगले गाने के साथ बढ़ते हैं समाचारों की ओर, मिलते हैं थोड़ी ही देर में आपके अपने मॉर्निंग बीट में.
1: Radio Masti, your number one Bollywood station.

0: सबको के नमस्ते भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको के स्वागत करत है जा हम एकर समर्थन नहीं करब ई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है। डोनाल्ड ट्रंप फिनो से सागोस द्वीप समूह के मॉरिशस के सौंपे की योजना पर अपन असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर करलक। वही समझौता के भयानक बोलेबा जब जेगो गौशा द्वीप के रणनीतिक महत्व पर बात करलक। न्यूयॉर्क में काल से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां सत्र चलत बा जहाँ पर सागोस द्वीप समूह पर बात होता। मॉरिशस और भारत के बीच नवा ऊर्जा समझौता आज अपन व्यावहारिक चरण में प्रवेश करता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति करल गल ईंधन के पहला खेप के लेके एक जहाज आज पोर्ट लुइस बंदरगाह पहुंचता। ई खेप एसटीसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नवा दीर्घकालीन समझौता की शुरुआत के प्रतीक है। भारत के सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिजिटल बदलाव के प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता। ई समझौता के एगो महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारी के प्रशिक्षण है जिनमें उ नवा उपकरण और तकनीक के इस्तेमाल खातिर तैयार करल जा सकी। अक्टूबर महीना से कर्मचारी लोग खातिर एगो सिमुलेट उपलब्ध करावल जाए। आज आयुर्वेद दिवस मनावल जाता है। एगो ऐसा प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा के समर्पित दिन जन स्वस्थ जीवन शैली संतुलित आहार और शरीर और मन के बीच सामंजस्य पर जोर देवेला। दूसर देश की खबर में श्रीलंका के हाईकोर्ट 2019 के ईस्टर संडे बम धमाका के साजिश रचे के आरोप में 15 जना के लंबा जेल की सजा सुनैले बा। ई हमला में 270 जना के मौत हो रहल और 500 से जस्ती जना घायल हो रहल। तैकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: On MBC Play and MBC.mu.
2: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Yes, दोस्तों सुबह की 8:07 हुए हैं. It's a beautiful Wednesday morning. कहाँ तक पहुँचे गाड़ी चला रहे हो, काम पर हो, पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, या तो फिर अभी ट्रैफिक में फंसे हो. भाई हमें सबकी खबर रहती है और आप हमें बोल भी सकते हैं. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ मोबाइल यूज़ नहीं करना. लेकिन हाँ, अगर बगल वाले बैठे हैं तो हमें तो बता ही सकते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है, या तो फिर हमें ये भी बता सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी मॉर्निंग कैसी है. सो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम. 549-1294 नंबर है. फिलहाल आज के दिन अगर आपके प्लान्स हैं तो चलिए पूजा से मिलते हैं, जानते हैं कि आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी. बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय शाम को बादल घिर आएंगे देश के पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लाटू पर. बाकी इलाकों में धूप खिली रहेगी. रात को भी मौसम सुहाना रहेगा. हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. जनता से शाम के समय दूर समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है. तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 26, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय आज सुबह 5:58 पर हुआ और सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Béala, Wednesday Bazaar, Logue Côte Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion, bidoun balle.
7: En betrave.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: स्वागतम वेलकम आप सबों का हमारे इस प्रोग्राम में जो कि है मॉर्निंग बीट. कैसे हैं आप, कहाँ पहुँचे आप? तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ रिक्वेस्ट भी हैं कि इससे पहले कि वो काम पे पहुँच जाए, गुड मॉर्निंग बोला है बहुत सारे लोगों ने, तो गुड मॉर्निंग टू यू. और यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा, कहते हैं कि आज मेरे पापा जो है 60 ईयर्स के हो गए हैं, उनका नाम है संजय किस्तु, कावलिन से हैं. प्लीज़ अगर आप उनको हैप्पी बर्थडे विश कर दें. हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपको बहुत बहुत सारा प्यार है. गुड मॉर्निंग रेशमा राम जतन, पापा को हैप्पी बर्थडे. अच्छा, रेशमा का बर्थडे है या पापा का बर्थडे है, आपने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया. लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वो है रेशमा, हमारे साथ है मामा सीता, ओजस्वी, लवीश, रति, किशन, विराज, बॉबी, दीपा, सचिन एंड रूमा. सो गुड गुड मॉर्निंग टू यू गाइज. एंड चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और करना क्या है हमें, बस आपके साथ यहाँ पर मस्ती करनी है. तो

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: क्या बात है, ये गाना तो अलग ही मूड में लेके चला जाता है। सुबह के 8:19 कहाँ तक पहुंचे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, पहुंच जाओगे आराम से। चलो तो यहाँ पर डांस का मूड हमने सेट तो कर दिया है मॉर्निंग 7 बजे से। अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा है जो घर पे उनका एक्सरसाइज हो गया होगा, जो गाड़ी में है वो भी झूम रहे हैं, तो इन्जॉय करना बनता है भाई। अभी अगर आप डांस करने के मूड में आ ही गए हैं तो हम डांसिंग को कैसे रोक सकते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं जलसा की रात में। यहाँ पर भी तो यही होने वाला है, भोजपुरी म्यूजिक होगा, डांस होगा, एंटरटेनमेंट होगी। यस, खेलिए एमबीसी के साथ और जीतिए 2 टिकट्स टू असिस्ट द फर्स्ट एवर भोजपुरी कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 26th of September, और ये हो रहा है ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल में। तो जलसा की रात जो है, यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, इनका लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है। हमारे साथ हैं रंबा राम तोहर, नीरज गुप्त, मधु, किशोर किमिया, किरनाल हीरेलाल, रोशन सदा सिंह एंड कृषि मोनिक। यही नहीं, आपको निशाने के लिए आ रहे हैं डीजे लाइक डील के, स्पाइकी वी, डीजे वकील, डीजे अभी एंड डीजे यानी। तो अगर आपको जीतना है ये 2 टिकट्स तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। वैसे मॉर्निंग में आपको पता है समाचारों के बाद भोजपुरी गाने चलते हैं, तो आज हमने भी एक गाना चलाया था। अब मुझे ये बताइए कि ये जो गाना मैं चलाने जा रही हूँ, मैं सिर्फ म्यूजिक दूंगी आपको और मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप पहचान सकते हैं कि ये गाना किसने गाया है।

तो ये मैं इतना ही म्यूजिक चलाऊंगी और मैं आपको ये बता दूं कि मॉर्निंग में आप इनका गाना सुन चुके हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा फेमस गाना है, वर्ल्ड वाइड लोग इसको जानते हैं, तो आपको मुझे सही जवाब देना है ऑन 5491294 पूरे नाम और पते के साथ। और जैसा आपको पता है समाचारों के बाद मैंने इस सिंगर का गाना चलाया था, मैंने बस आपको एक हिंट दिया है, जल्दी बताइए सिंगर का नाम 5491294 पर।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: सबने सही जवाब दिया, सबने सही जवाब दिया। मैंने गाना आपके लिए बस म्यूजिक चलाया था और ये था ये म्यूजिक, और आपको बताना था कि ये गाना कौन सा है। और आपको मिल सकता है 2 tickets to our sister first ever Bhojpuri concert on Saturday 26th of September। ये हो रहा है लाइव कॉन्सर्ट at Bliss Banquet Hall, जलसा की रात at Arsenal। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने ये म्यूजिक चलाया था और हमने आपसे पूछा था कि सिंगर कौन है, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिया है, सब ने सही जवाब दिया है। और गाना है जुबेदा और गाने वाली रंभा राम। तो

0: थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. मैं जानती हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि भाई आज हमारी बारी लग जाए, आज हमारी बारी लग जाए, आज हमें इनाम मिल जाए. कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और आप लोगों ने कोशिश की, आपकी कोशिश रंग लाई है. और यहाँ पर विनर है वर्षा लक्ष्मण फ्रॉम बिल वी मोगल. कंग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया. आपको मिल रहा है 2 टिकट्स. आप जा सकते हैं इस लाइव भोजपुरी कॉन्सर्ट में जो होने वाला है सैटरडे 26 सितंबर एट ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल. तो बस जलसा की रात जो है इसमें आप पार्ट लेने वाली हैं, इसमें आप डांस करने वाली हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक इवनिंग. लाइव परफॉर्मेंस बाय रंभा राम तोहर, नीरज गुप्त मधु, किशोर खेमिया, कुणाल हीरीलाल, रोशन सदा सिंह एंड नकृषि मुनिक. और डीजेस होंगे नील के, स्पाइकी वी, डीजे वकील, डीजे अभी एंड डीजे एनी. ज्यादा जानकारी के लिए फोन करें 5792-6262. और वर्षा आप अपने टिकट्स कलेक्ट करने आइएगा एमबीसी सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच अपने आईडी के साथ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. यानी कि आप अभी तो वेडनेसडे हो गया, यानी कि आपके पास आज का, कल का और फ्राइडे का टाइम है. आइए और अपना टिकट ले जाइए.
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

Morning, RM2 listeners, the latest from the sports world. कल से UEFA Nations League के मैच खेले जाएंगे. ग्रुप 1 में अंडोरा माल्टा, ग्रुप 2 में नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच मुकाबला, सर्बिया ग्रीस, लेश्टेनस्टाइन लिचुआनिया. ग्रुप 3 में ऑस्ट्रिया इसराइल, कोसोवो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ग्रुप 4 में नॉर्वे डेनमार्क पोर्टुगल वेल्स. इंग्लैंड की टीम ग्रुप 3 में है. कल इस शनिवार को सैटरडे मैच स्पेन के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के खिलाफ तगड़ा मैच इंग्लैंड के लिए वेम्बले में. रियल मैड्रिड और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियान एम्बापे ने कहा कि साल 2016 में जब वो 18 साल का था और मोनाको में खेलता था, तब वो लिवरपूल के लिए साइन करने के एकदम करीब था. उसकी माँ अनफील्ड रोड आई हुई थी. अनफील्ड रोड में आकर यर्गन क्लॉप से मिलकर वो बहुत खुश हुई और दोनों बहुत पसंद आए. वो चाहती थी कि एम्बापे लिवरपूल में आए. उसके लिए लिवरपूल ने एक प्राइवेट जेट फ्रांस भेजा था. एम्बापे का पूरा परिवार प्राइवेट जेट में आया. वहां बातें हुई, खूब खाया पिया, पर किलियान एम्बापे को मना नहीं पाए. एम्बापे खेलना चाहता था पेरिस सेंट जर्मेन में और वही हुआ. आर्सेनल के बॉस मिकेल आर्टेटा को नए कॉन्ट्रैक्ट में नई डील दी गई. इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी 10 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से कहीं अधिक और 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग बोनस. आर्सेनल को चैंपियन बनाकर आर्टेटा अब यहां अपनी डिनास्टी, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है. प्रीमियर लीग टाइटल जीतने के लिए फेवरेट है. ट्रांसफर बाजार से कुछ खबरें. मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस के लेफ्ट बैक टैरिक मिचेल के पीछे हैं. दोनों टीमों में लेफ्ट बैक पोजीशन में कमजोरी है. यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग के लीग स्टेज के मैच कल खेले गए. मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख के बीच मैच ड्रॉ. इंटर मिलान ने हैकेन टीम को 1-0 से हराया. आर्सेनल की जीत एचबी कुज टीम के खिलाफ. यूवेंटुस 1 बेनफिका 2, रियल मैड्रिड 1 पेरिस एफसी 1. इधर पेरिस सेंट जर्मेन 1, रियल मैड्रिड 1 पेरिस सेंट जर्मेन 1. आज चेल्सी ऑस्ट्रिया वियन, बार्सिलोना पेरिस एफसी, सर्वेट लियोन और ओएचएल एएस रोमा. एशियन गेम्स में टीम इंडिया का पहला गोल्ड मेडल. वुमेन्स क्रिकेट फाइनल में भारतीय लड़कियों ने श्रीलंका को हराया. भारतीय टीम के 216 रनों के जवाब में श्रीलंका की महिला टीम केवल 69 रन पर ऑल आउट हुई. 2023 के बाद 2026 में भी एशिया की चैंपियन टीम बनी भारतीय टीम. मेंस टीम इंडिया भी जापान में है. एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक वन ऑफ वार्म अप मैच खेला गया जापान के खिलाफ. केवल 5 ओवर का मैच रहा. केवल 2 रनों से टीम इंडिया जीत पाई. टाइट मैच था. फाइनल ओवर में एक वाइड ओवरटर्न किया गया और भारतीय टीम की जीत हुई. इधर इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे वनडे इंटरनेशनल मैच में पहला मैच इंग्लैंड ने जीत लिया है. बीच सोको की बात करें, कान 2026 के प्रीलिमिनरी राउंड में कल मॉरिशस का सामना अंगोला से होगा. ब्लू बे अरेना में मैच खेला जाएगा. मैच इस रविवार, इस संडे को के लिए निर्धारित था, पर अंगोला की टीम फ्लाइट मिस कर गई थी. साइकिलिंग, कनाडा में लग रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप के रिले मिक्स्ड में हमारी टीम मोरिस एमसेबे 12वें स्थान पे आई, 12th पोजीशन. अलेक्जेंडर मेयर, डैनियल योनहिन और जेरेमी राबुद लड़कों में और लड़कियों में कामिल शास्तो, लुसी लाजेस मेयर और किम्बर्ली लेकू डेब्यू की ना थी. पहला स्थान इटली को गया. इधर कुसाफा अंडर 20 में मॉरिशस का सफर पूरा हुआ एक हार के साथ. लगातार तीसरी हार. इस बार मोजाम्बिक ने बेबी क्लबम को 5-0 से हराया. एक अच्छा अनुभव हमारे खिलाड़ियों के लिए. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे चलकर बहुत कुछ कर पाएंगे सरजू गौरीशंकर के साथ. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. आई विल कैच यू वेरी सून. टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम लिसनिंग RM2. टेक केयर. बाय बाय. RM2 Radio Masti.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, जिंदगी से हमें बहुत शिकायतें होती हैं। जिंदगी ने हमारे साथ ये किया, जिंदगी ने हमारे साथ वो किया। जिंदगी को कल की टेंशन में नहीं, आज की सांस में जीना सीखो। हम अक्सर पास्ट को रिग्रेट और फ्यूचर को वरी करते करते प्रेजेंट मोमेंट भूल जाते हैं। बस एक पल रुककर अपनी ब्रेथ यानी अपनी सांस को नोटिस करो। हर इनहेल याद दिलाता है कि यू आर हियर और हर एक्सहेल कहता है लेट इट गो। सांस अंदर, लाइफ को फील करो। सांस बाहर, जो कंट्रोल में नहीं उसे रिलीज करो। आज बस 3 डीप ब्रेथ लो बिना फोन देखे, क्योंकि कभी कभी पीस किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं, एक माइंडफुल ब्रेथ में ही होती है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को मौका देते हैं रुकने की, थमने की और उसे जीने की।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire, mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
6: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय में सुन रहे हैं, चलिए आपका मूड बदल गया होगा और आपका टेंशन भी दूर हो गया होगा, काम पर जा रहे हैं, मूड अच्छा होना चाहिए, स्माइल करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसे सुनकर हमें अच्छा लगता है, स्माइल करते हैं, तो बस हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हमें और क्या चाहिए। और बाकी अगर आप हमारे साथ हैं और हमें कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो नंबर आपको पता ही है, इट्स 5491294। यहाँ पर चलिए जो नेक्स्ट गाना होगा हम विश्वान धूमा जी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और बहुत प्यार से वो हमें सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना होगा वो आपके लिए, आपके वाइफ के लिए, और यही गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे सारा आपके नाम जो हमारे गीतों को एंजॉय कर रही हैं। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे वो हमें कोट्स भेजते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं आपके लिए और मिहिका आपके नाम जो बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं।
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio Musti.
2: और ये गाना हम डेडिकेट करेंगे राखी के लिए जो ड्राइव कर रही है। Be careful while driving. And a good morning, guys. Welcome to Radio Musti. Whoa.

चलिए जी, मेरे जाने का टाइम हो गया है और बस यही कहूंगी कि आज का दिन आपके लिए ब्यूटीफुल रहे, अच्छा रहे, फ्रूटफुल रहे. काम के लिए जा रहे हैं, काम भी दिन अच्छा बीते या काम की तलाश करें, नौकरी मिल जाए, आपका बर्थडे है, एकदम हैप्पीनेस ब्लास्ट हो जाए और आप खुश रहे. तो चलिए कल मॉर्निंग में मिलेंगे 7 बजे. ख्याल रखिएगा. बाय बाय.

चलिए तारे तो बच गई, पिया घर आ गया, लेकिन अब जाने के भी टाइम हो गया। जितने लोग अभी घर पर हैं ये सोच रहे हैं कि अब काम पे निकलने का वक्त हो गया है, कुछ हो गए लेट और कहीं कर रहे हैं वेट क्योंकि उनका बना नहीं ऑमलेट। चलिए साहब, खाना पीना तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में म्यूजिक का फुल ऑन डोज। थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं। पूजा जी आइए, उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते पूजा।
1: रत्ना सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता, ये है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शागुस्त द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। उन्होंने इस समझौते को भयानक बताते हुए जेगो गार्सिया द्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी जोर दिया। न्यूयॉर्क में कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र रहा है, जहां शागुस द्वीप समूह चर्चा में है। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्ट लुइस पहुंच रहा है। ये खेप एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत की सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है। इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, ताकि उन्हें नए उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सके। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। और विदेश में श्रीलंका की हाई कोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई है। इन हमलों में 270 लोगों की जाने गई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो ये थी अब तक की खबरें। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
2: Welcome to RM2.
3: Musty Mornings. Radio Musty.

Beautiful morning, ladies and gentlemen. Norwich ka saath minute. Hello, welcome. Wednesday ka din, 23rd of September. Hey, midweek masti. Oh yes, already Wednesday. हफ्ता जैसे शुरू हुआ इतनी फटाफट रफ्तार के साथ पहुंच गया है. यहाँ पर भी आप कहाँ पहुंचे फटाफट रफ्तार के साथ. No, अपना टाइम लीजिए और कहीं भी जाएंगे वहां पर बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ही पाएंगे. म्यूजिक हमेशा साथ लेकर यूं ही चलता रहूं आपसे मिलता रहूं. हेलो, गुड मॉर्निंग.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वही नॉर्मल सी बात है कि हर दिन जहाँ दिन की शुरुआत होती है वहीं रियलिटी से मुलाकात होती है और लगता है कि इतना सारा काम बाकी है भाई, करें तो क्या करें, बस वो एनर्जी होनी चाहिए अंदर से और फिर लगता है कि सारा काम हो ही जाएगा। कल भी किया ना, इतने साल किया ना, और जितने भी लोग मुश्किलों में पड़े हैं वही सोच रहे हैं कि उफ इससे आगे कैसे निकलेंगे। पिछली बार सोचिए, जैसे नॉर्मल आप रोड पे जा रहे हैं, एक स्पीड ब्रेकर आया उससे ऊपर निकल जाते हैं और पीछे का रास्ता पीछे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो सीखा है, जो समझा है, जो सबक लिया उसको लेकर आगे चलते रहो, रूप और रंगत बदलते रहो। Right, ladies and gentlemen, ये मस्त मॉर्निंग शो जहाँ पर गाने तो फटाफट चलने ही वाले हैं, वहीं पर we also gonna talk about some lifestyle की tips, जहाँ पर जिंदगी में थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा एक्शन, और जब जिंदगी वापस लौट कर देती है मुस्कुरा के रिएक्शन तो लगता है कि अरे सब कुछ ठीक हो गया ना, बस थोड़ी सी ट्यून करनी जरूरी है। तो बस ट्यून हो जाओ, साथ देते जाओ 5491294 आपके मैसेजेस।
0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए साहब जान लेते हैं आज की राशियों और शुरुआत करते हुए
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई आज एरीज का कॉन्फिडेंस फुल ऑन टर्बो मोड में रहने वाला है। काम में कोई पेंडिंग चीज फाइनली मूव हो सकती है। बस एक बात, जल्दी में डिसीजन लेने से पहले 10 सेकंड का पॉज लेना जरूरी है। लव लाइफ में थोड़ा एक्स्ट्रा टेंशन मिलेगा तो एटीट्यूड में थोड़ा सा सॉफ्टनेस बना के रखिए। आज का मंत्र, स्पीड अच्छी है पर डायरेक्शन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: टॉरस आज का दिन ये कह रहा है कि स्लो एंड स्टेडी बट डेफिनेटली मूविंग। पैसा या करियर से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल थॉट आपको फ्यूचर के लिए बेटर प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। रिलेशनशिप में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने के बजाय अप्रिसिएशन दिखाइए, वाइब इंस्टेंटली बेटर हो जाएगी। आज का मंत्र, जो चीज पेशेंटली ग्रो होती है वो अक्सर स्ट्रॉन्गली ग्रो होती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: जेमिनी कम्युनिकेशन आपका आज काफी कमाल का रहने वाला है। बस कह सकते हैं कि किसी कॉन्वर्सेशन मीटिंग या मैसेज से इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। बस ओवरथिंकिंग को म्यूट बटन पे रखिए। लव में एक स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर सकती है। आज का मंत्र, हर थॉट को आंसर नहीं चाहिए, कुछ थॉट्स को सिंपली लेट गो ये भी करना जरूरी है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: भाई आज इमोशंस थोड़ी से हाई डेफिनेशन में फील हो सकती हैं। किसी पुरानी बात की याद आ सकती है लेकिन उसमें अटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बस सोचकर वहीं रुक गए। क्या हुआ सर, मूव। फैमिली या क्लोज फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वो जो आपका मूड है वो ब्यूटीफुली आपको चेंज कर देगा। वर्क में अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आज का मंत्र, सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं, बस अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना है।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम है उसको कर दियो। भाई स्पॉटलाइट तो नेचुरली आपकी तरफ आ सकती है। वर्क में आपका आइडिया नोटिस हो सकता है और सोशल लाइफ में भी आपकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग रहने वाली है। लेकिन रिमेम्बर, कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। दूसरों को भी शाइन करने का मौका दीजिए। आज का मंत्र, रियल लीडरशिप वो है जो आप खुद को चमकने का मौका देती है और दूसरों को भी।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: वर्गो आज प्लानिंग का दिन है बट ओवर प्लानिंग की जरूरत नहीं है। आप किसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सोल्यूशन इजिली स्पॉट कर सकते हैं। वर्क में डिटेल्स आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। पर्सनल लाइफ में हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश थोड़ी कम कीजिए। समटाइम्स इम्परफेक्ट मोमेंट्स ही बेस्ट मेमोरीज बनाते हैं। आज का मंत्र, प्रोग्रेस को परफेक्शन से कंपेयर मत कीजिए।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: भाई बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। जरूरत सबसे ज्यादा आपको खुद है। दूसरों को प्लीज करते करते अपनी प्रायोरिटीज साइड में मत रखिए। करियर में कोलैबोरेशन बेनिफिशियल हो सकती है, ये सोचना ठीक है, लेकिन पेपर होमवर्क करना जरूरी। कहाँ बढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में। लव लाइफ में एक स्वीट जेस्चर, मैसेज, कॉल या सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट रिलेशनशिप को वार्म फील करा सकता है। आज का मंत्र, भाई पीस तभी ब्यूटीफुल है जब उसमें आपकी ओन हैप्पीनेस भी इंक्लूडेड हो।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज इंट्यूशन की जो वॉल्यूम है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप किसी सिचुएशन के हिडन डिटेल्स नोटिस कर सकते हैं लेकिन हर मिस्ट्री सॉल्व करना जरूरी नहीं। आप तो इन्वेस्टिगेटर बन गए। भाई करियर में फोकस स्ट्रांग रहेगा और पर्सनल लाइफ में ऑनेस्टी किसी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकती है। आज का मंत्र, कंट्रोल हर चीज पर नहीं अपने रिएक्शन पर रखिए।
2: सजिटेरियस धनुराशि।
1: आज इंट्यूशन का जो वॉल्यूम है ना वो तो आपने कंट्रोल कर ही लिया लेकिन एडवेंचर की जो फीलिंग है ना उसको ऑन रखिए। ट्रैवल प्लान हो, न्यू आइडिया हो, बस रूटीन तोड़ने का मूड बन रहा है, कुछ डिफरेंट वाली फीलिंग नहीं। करियर में रिस्क लेने से पहले फैक्ट्स चेक करना स्मार्ट रहेगा। और रोमांस, अरे साहब थोड़ी सी मस्ती क्यों नहीं, प्यार मोहब्बत से दुनिया चलती है। आज का मंत्र, लाइफ को सीरियसली लेने के साथ साथ एंजॉय करना भी जरूरी है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज डिसिप्लिन मोड ऑन रहने वाला है। जो काम दूसरे पोस्टपोन कर रहे हैं उसको आप क्वाइटली कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ग्रुप बिहेवियर में आ जाए, बाकी कर रहे हैं तो मैं भी नहीं, नॉट रियली। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना जरूरी है। बस वर्क के लिए आपको बीच में डिस्ट्रैक्शन मोड को ऑफ करना होगा, थोड़ा रिलैक्स बटन भी दबाना होगा। आज का मंत्र, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं जर्नी का एक्सपीरियंस भी है।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: एक्वेरियस, आज ब्रेन में आइडियाज की बारिश हो सकती है। टिप टिप बरसा पानी और एक आइडिया से बन गई पूरी कहानी। एक अनयूजुअल थॉट फ्यूचर में यूजफुल अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सो आइडियाज नोट करते जाइए। सोशली काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन में आप घुसने वाले हैं, बस अपने यूनिक आइडियाज एक्सप्लेन करते वक्त थोड़ा सा पेशेंस

0: रखना जरूरी होगा। हर कोई आपकी वेवलेंथ पे नहीं चलेगा ना। डिफरेंट होना प्रॉब्लम नहीं, अपनी डिफरेंस को स्ट्रेंथ बनाना ये सीखिए।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: पाइसेस आज इमेजिनेशन और इमोशन दोनों एक्टिव हैं। क्रिएटिव काम, म्यूजिक राइटिंग या कोई आर्टिस्ट मोड में आ रहे हैं तो अच्छी बात है। किसी के वर्ड्स को पर्सनली लेने से पहले उनका इंटेंशन समझना ये जरूरी है। हाँ, अपने ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम बैंक में डिपॉजिट मत कीजिए, उन पर एक्शन भी लीजिए। आज का मंत्र, ड्रीम बिग, फील डीपली एंड कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। योर डेली हॉरोस्कोप
2: RM2 रेडियो मस्ती
3: RM2 रेडियो मस्ती
2: फील द

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखिए साहब, इंसान खुश रहना चाहता है, चाहता है कि उसके चारों तरफ पॉजिटिविटी रहे। और वैसे कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसी जो फोर्सेस हैं ना, जो वाइब्स हैं, आपको चारों तरफ से घेर लेती हैं। सुबह उठते ही प्रॉब्लम्स को अटेंडेंस मत देने दो, एक डीप ब्रेथ लो, स्माइल करो और बोलो आज का दिन मेरे कंट्रोल में रहने वाला है। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट। फिर लगता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अरे तो कंडीशनिंग है दिमाग की। वैसे कहते हैं कि हर प्रॉब्लम को 24 घंटे देने चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको सॉल्व करने का मौका मिलता है। इसलिए उसी टाइम ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि अब हो गया कुछ, क्या करना चाहिए। अरे साहब, इससे अच्छा है कि आराम से उसको थोड़ा टाइम दीजिए। और बाकी लोग भी आएंगे, आप उनसे एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप पूरे दिन इसी चक्कर में ना रहें कि अब होगा क्या, क्या करेंगे, हाँ, क्या होगा। भाई मूड ऑफ है तो एक वॉक कर लो, एनर्जी लो है तो स्ट्रेच कर लो, माइंड थोड़ा क्लटर्ड है तो थोड़ा बाहर निकलो। कभी कभी सॉल्यूशन सोफा पर नहीं, थोड़ी मूवमेंट में मिलता है।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

I'm sure कि आप भी म्यूजिक को मना नहीं करेंगे, because म्यूजिक है आपका साथ देने के लिए. M2BM 24/7. गानों का अगर हाथ थाम लिया है और ये जान लिया है कि यहाँ पर you get the best mix.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
1: Time check, exactly 10 a.m. स्टूडियो में आगे पूजा उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
5: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्यूएन की ग्वांगजू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के

आयात पर बात की गई जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फिलहाल प्रस्तावित कीमतों का विश्लेषण कर रहा है। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज दिन के करीब 1 बजे पोर्ट लुइस पहुंचेगा। आज आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। इसमें स्वास्थ्य को मात्र बीमारी की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शरीर मन और जीवन शैली के संतुलन के रूप में देखा जाता है। विदेश में न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र शुरू हुआ, शागुस द्वीप समूह मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और अजी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच बातचीत के जरिए तय की गई इस संप्रभुता हस्तांतरण प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसका समर्थन नहीं करता। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। मौसलमा सेंट अंतोन गुडलैंड्स में 73 साल के 73 years old जनाब आज़ाद इमाम जी जिन्हें लोग आज़ाद नाम से ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई है। वे पहले पुलिस कैपरल थे। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके बेटे नशीरुद्दीन इमाम जी के मकान मौसलमा सेंट अंतोन गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमोका कब्रिस्तान में जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। एवेन्यू रोज वेयर्ड में 64 साल की 64 years old श्रीमती रंभावती अनमोल पैदाशी नाम दिगंबा और जिन्हें लोग कविता नाम से ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ आज दिन के 1:30 बजे इनके पति दानिश अनमोल के मकान एवेन्यू रोज वेयर्डन से उठाकर सर कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टू डेट 1:30 PM। और दयालिन सेंट इलिया में 57 साल के 57 years old श्री भूषण सुखी जिन्हें लोग इंदिवर नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी रेशमा सुखी के मकान दयालिन सेंट इलिया से उठाकर सैतिलिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: कुछ अनफॉरगेटेबल मूवीज होती है ना, और ये गाने बहुत ही कमाल के। सुभाष घई का बीच में एकदम से आ जाना, जैकी दा जहाँ पर बिड़ू मैं पिक्चर नहीं कर पाऊंगा बिड़ू, एंड फाइनली रियलाइज किया कि वो सब कुछ करवा रहे थे, बस वो पहचानने की देर थी। खत्म करें मतलब शुरू करें।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
0: लीजिए आप जहाँ पर एक गाना खत्म तो दूसरे के साथ शुरू हो गए हम। हेलो वेलकम, अरे वाह ये तो कहानी बन गई। 10:11 10:23 हेलो वेंसडे का दिन, हाल चाल ठीक है ना? घर पर जितने लोग हैं और काम काज चल रहा है, आपको बहुत सारा साहस मिलता रहे। अब जब मिल गए हैं और ये जो किस्मत कनेक्शन हो गया है, इसको चलने दो।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे की हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो आप लोगों के कुछ मैसेजेस और जीना जी आ गई हैं और कहते हैं गुड

0: मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, शुभ प्रभात. अरे बहुत बहुत धन्यवाद. बस कोई किसी के बारे में थोड़ा सोच ले और उनको विश कर दे कि आपका दिन अच्छा हो, एक पॉजिटिव थॉट भेज दें, बहुत फर्क पड़ता है. नहीं, थैंक यू सो मच, ऑलवेज नाइस टू हेयर फ्रॉम यू. जीना जी, मोनी जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच. कहते सवेरे से बस गानों के साथ मैं झूम रही हूँ. थैंक यू सो मच. स्ट्रेस फ्री, ये है स्वास्थ्य. ओए ओए, मैं कहता हूँ इससे बड़े तो बात नहीं हो सकती. हम तो कोशिश करते हैं कि दवाई तो नहीं लेकिन म्यूजिक थेरेपी जरूर दे दें. और इससे बेहतर और क्या कि म्यूजिक आपके मूड को चेंज करता है. और आ गए हैं लविशा दाहिन, श्वेता, रविश, प्रिशा, अबाउट फैमिली से एंजॉइंग द सॉन्ग्स. कितने लवली शो, थैंक यू जी और गुड मॉर्निंग. ऐसा गाना स्पेशली फॉर मम्मी अमृता. ये प्लान द होस्ट से हैं, बेस्ट विशेस हैं सन आतिश की तरफ से, स्मॉल डॉटर की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अभिषेक को भी एंड ढेर सारा प्यार. अरे जब होती हैं इतनी खुशियां, होता त्योहार तो थोड़ा सा धूम मचा लें. कैसे?
1: Bitch, I could doom, bitch, I could doom, bitch, I could doom, bitch, I could doom.

0: Let's make some music नए पुराने गानों के साथ.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा ये जो कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन चाहे दिन को कम्बे कर ले, भाई कल इतनी ठंड थी आज तो मौसम ठीक है, या फिर पड़ोसी के साथ या फिर किसी कली के साथ, ये जो कंपैरिजन है ना, इसका जो कनेक्शन उसको डिस्कनेक्ट कर दो और ये सोचो कि अपनी रेस, अपना पेस और अपना स्पेस. आप कैसे अपने आप को फिट करते हैं बस वो देखिए, दूसरों की लाइफ या फिर रील देखकर ये मत सोचो कि भाई वो तो ये कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं. भाई हर दिन रेवोल्यूशन जरूरी नहीं है, बस 1% बेटर. अब सोचिए 365 दिन है, 300% बेटर हो जाएंगे. एक नया स्किल, एक नई हैबिट, एक बेटर थॉट, छोटी सी प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है. बस ये है कि हर बात को पकड़ कर मत बैठ जाओ, हर बात को कोर्टरूम का केस मत बना दो कि तुमने कहा था हमने कहा था और ये सिचुएशन यूं ही चलती जाए. कुछ सिचुएशंस को एनालाइज करने के बजाय सिंपली बोलो चलो देखते हैं क्या होता है.
1: वेलकम टू आरएम2.

0: Musty Mornings Radio Musty.
1: सिचुएशंस आएंगी और चली जाएंगी, जैसे गाने में आप

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti. भाई आजकल वेदर ये हो रहा है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग्स के अंदर जो सिचुएशन थोड़ी सी कूल होती है और आफ्टरनून्स थोड़ी वार्म हो जाती है. सो फैशन भी होना चाहिए लेयर लाइट और एफर्टलेसली कूल स्टाइल हैक. सुबह की कूल वेदर के लिए एक लाइट वेट ओवरशर्ट या थिन डेनिम जैकेट रखो. टेम्परेचर बढ़े तो ईजिली रिमूव कर सकते हो. आफ्टरनून जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का हॉलीडे वार्डरोब यहाँ परफेक्ट इंस्पिरेशन देता है. जैसे कि लिनन शर्ट्स या फिर कॉटन ट्राउजर्स या फिर रिलैक्स शॉर्ट्स, ब्रीजी ड्रेसेस, पोलो टी शर्ट्स इन लाइट कलर्स, सनग्लासेस अ मस्ट और कंफर्टेबल सैंडल्स. वैसे गोल्डन रूल ये है कि ट्रॉपिकल आफ्टरनून में फैब्रिक मैटर्स मोर देन फैशन. और इवनिंग जैसे कि वो कूल स्टाइल दिल चाहता है. आफ्टरनून आउटफिट को कम्प्लीटली चेंज करने की जरूरत नहीं, बस एक स्मार्ट लेयर ऐड कर सकते हैं. लाइट कार्डिगन, लिनन ओवरशर्ट या थिन बॉम्बर या फिर लाइट वेट श्रग. बस ये कह सकते हैं कि सुबह लेयर, दोपहर में लाइटर, शाम को फिर से स्टाइलिश स्वेटर.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अच्छा, जिंदगी की राह में दो लोग निकल पड़ते हैं, धीरे धीरे फीलिंग्स ग्रो करती हैं और वक्त के साथ ये गहरी होती जाती है। पहले किसी की याद आती है और फिर आदत बन जाती है। पहले उनकी एक स्माइल अच्छी लगती है, फिर वो स्माइल पूरा दिन बना देती है, और कभी कभी बिना कुछ कहे दिल समझ जाता है कि दूसरा क्या कहना चाहता है। ये एक खास फीलिंग है, राइट? टाइम गुजरता है, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो हर गुजरते दिन के साथ वो और गहरा हो जाता है।

वैसे म्यूजिक में वो ताकत होती है कि दिमाग को रिलैक्स कर देता है और फिर लगता है कि सब कुछ ठीक ही तो है, बस यही चाहिए होता है जिंदगी के अंदर, कुछ लम्हे अपने लिए, कुछ पल अपने लिए। और जब आप अंदर से खुश होते हैं तो खुशी जाहिर होती है बाहर। कहाँ चलती है? थोड़ा बाहर ठंडी हवा लेने के लिए और मैसेजेस भेजने के लिए 5491294 पर। Let's continue with this beautiful magic of love। इसलिए जैसे हवाएं चल रही हैं और म्यूजिक भी कुछ ऐसे ही बहता हुआ आपकी तरफ।

वेस कितनी बार होता है कि आप अपने दिल के चलते हार जाते हैं और ये फीलिंग्स जीत जाती हैं। दिस वाज एग्जैक्टली हैपनिंग। साथ देने विराज एंड प्रेमा एंड भामिनी कहते हैं कि ये जो प्यार का सागर है इसमें डूबने का मन कर रहा है। भामिनी, दिस वन फॉर यू एंड होप यू हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल डे अहेड। श्रेया गाओ ना।

0: वो तो मुझे भूल गया लेकिन मैं नहीं भुला पाई उसे। लेकिन फिर मेरी लाइफ में तुम आए, तुमसे मिलके फिर से कुछ लिखने का मन किया, शब्द बहने लगे और उसके साथ मेरा दर्द भी बह गया। मैंने हंसना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया, सब कुछ अच्छा हो रहा है। It's just because of you.
1: Thank you so much. It's all because of you, listeners. वक्त हो गया है अभी समाचार का। स्टूडियो में पूजा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
2: नमस्कार विकास, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने व्यावहारिक चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज पोर्टिस बंदरगाह पहुंच रहा है। ये खेप एसटीसी तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच नए दीर्घकालीन समझौते की शुरुआत का प्रतीक है। भारत की सरकार कोगो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर रही है और इस सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। अक्टूबर महीने से कर्मचारियों के लिए एक सिमुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मनाया जा रहा है आयुर्वेद दिवस, एक ऐसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा परंपरा को समर्पित दिन जो स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर एवं मन के बीच सामंजस्य पर जोर देती है। विदेश में श्रीलंका की हाईकोर्ट ने 2019 के ईस्टर संडे बम धमाकों की साजिश रचने के आरोप में 15 लोगों को लंबी जेल की सजा सुनाई

0: हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन, रॉयल रोड, पॉपुलर मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो।

जरूरी है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, थोड़ा हंसो, थोड़ा चलो, थोड़ा सीखो, थोड़ा सिखाओ, टेंशन को बोलो आज नहीं, नेगेटिविटी को बोलो बाय बाय, और हर मॉर्निंग खुद से बोलो मैं रखूंगा अपना ख्याल, मी टाइम, थोड़ा ग्रो करेंगे।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: इतने सारे फोन के नए मॉडल एक के बाद एक, हर साल नई टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन साहब जो इंसान का मॉडल है ना, यानी कि जो दिमाग है, जो फीलिंग्स है, वो वैसा ही रहता है। लेकिन इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं फोन के साथ, उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों से जरूर मिलते हैं, लेकिन वर्चुअली तो क्यों ना कुछ और किया जाए। लोगों को ज्यादा समय तो अपने फोन को नहीं, नोटिफिकेशंस वेट कर सकती हैं, रिलेशनशिप नहीं। कभी फोन को साइड में रखो और सामने बैठे इंसान को फुल अटेंशन दो। कहते हैं कि ये जो मानस होती है ना कि आप किसी से बात करें और कहीं और देख रहे हैं, हाँ, नॉट गुड एट ऑल। इसलिए जब किसी से बात करते हैं तो थोड़ा ये सोचें कि उसको कैसा लगेगा अगर आप उसको देखे बिना और आप हाँ बिजी कहीं और। प्लान परफेक्ट होने का वेट करोगे तो कैलेंडर बदल जाएगा, 26 से 27 आ जाएगा। सोचो, प्लान करो, फिर मूव करो। छोटा सा एक्शन परफेक्ट प्लान कर सकते हैं किसी और दिन। और वैसे कभी कभी ना हम प्रॉब्लम्स को इंस्टेंटली नोटिस करते हैं, हैप्पीनेस को नहीं। छोटी छोटी खुशियां भी मायने रखती हैं। आज की चाय अच्छी थी, अप्रिशिएट करो। साथ में अगर वेदर ब्यूटीफुल था तो एंजॉय करिए। किसी ने स्माइल की तो स्माइल बैक। और मैं जानता हूँ कि ये जो गाने चल रहे हैं उसके चलते जो आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, ओहो, यू ट्यून इन टू द राइट फ्रीक्वेंसी। इसे तो प्यार से हमेशा हम कहते हैं कि साथ देते रहो,
3: सुनते रहो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ऐसा अब टेक्नोलॉजी तो दुनिया भर में फैली रही है और अभी आपको ले चलते हैं सीधा फ्लोरिडा. वो इसलिए क्योंकि वहां पर भी टेक्नोलॉजी का कमाल का कारनामा. जानते हैं कि अजगर जो होता है, हा? जो स्नेक होता है वो खरगोश को खाता है, लेकिन अब खरगोश अजगर को पकड़ने निकला है. एक्चुअली सोलर पावर्ड रोबोट्स, ये खरगोश, ये जो रैबिट्स हैं, इनको तैनात किया गया है. हाईटेक जाल को बिछाने का काम किया गया है. वहीं पर होता है कि जो अजगर होते हैं, जो सांप होता है, वो बॉडी हीट और दुर्गंध को, स्मेल को पहचाने के बाद ही बाहर निकलता है पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए खरगोश का. रिसर्चर्स ने अजगर की इन्हीं खूबियों को अपना हथियार बनाया है. खरगोश किसी असल खरगोश की तरह शारीरिक गर्मी और गंध छोड़ते हैं, जैसे अजगर असली और नकली का फर्क नहीं कर पाते और बस निकलाते हैं बाहर अपने होल से और फिर पकड़ लिए जाते हैं. कमाल हो रहा है ना भाई. आजकल देख रहे हैं कि रोबोट जहाँ पर जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए या फिर बचाने के मोड के अंदर, वहीं पर रोबोट्स अभी ओलंपिक्स में जैसे भाग रहे हैं वैसे ही भाग रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. कितने सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आर्टिस्टिक हैंड्स बना रहे हैं, जो कि रियल लाइफ जो आर्टिस्ट होते हैं या फिर जो लोग काम करते हैं, इवन बाल काटने का क्या उनकी मूवमेंट्स होती हैं, कैसे उनकी उंगलियां चलती हैं, सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं. और आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप बैठे हो और अल्फा बीटा और गामा काट रहे हो बाल ऑफ डैडी बच्चा एंड मामा.

जाना गुड टाइम एंड थैंक यू सो मच, आपने प्यार से साथ दिया और अभी थोड़ी देर में आने वाली नीलमणि आपके साथ देने के लिए बारह से दो के बीच में रेट्रो रिदम ऑल इज गोल्ड कुछ बेहतरीन गानों के साथ कुछ 90s के तड़के के साथ।

रोशन जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, गायत्री जी आपका भी स्वागत, अंश हमारे साथ दे रहे हैं और कहते हैं स्पेशली फॉर मी फैमिली एंड फ्रेंड्स।

0: दुनिया
1: ब्यूटीफुल
0: फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया
1: वही पूनम और बहुत सारा प्यार पूरी हिंचू फैमिली की तरफ से जिवाली फैमिली एंड रामधन फैमिली की तरफ से ढेर सारा प्यार रेखा जी की तरफ से अंश के लिए

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि सभी को, मेरा नमस्कार रिजवी के ओक्टावियो ऑडिटोरियम में आज सुबह। जी हाँ, ये समाचार फिर से सुन लीजिए। आज इबेन में मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशिया द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसके दौरान एमएमएम के 57वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित गतिविधियों के बारे में जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि ये समारोह रविवार को ओक्टावियो रिजवी के ओक्टावियो ऑडिटोरियम में लगेगा। कृषि उद्योग मंत्रालय यह छोटे किसानों को बीज और फलों के पौधों के उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है। इच्छुक किसानों के लिए दो कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कार्यक्रम लौकी, बैचिसों और खीरे के बीज उत्पादन से संबंधित है। इसके तहत 57 किसान शामिल हैं और क्वालिटी डिक्लेयर्ड सीड प्रोग्राम के अंतर्गत 80 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। मॉरिशस चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयास के साथ साथ आपूर्ति के एक नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री माइकल सिक्वेन की ग्वांगसू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य प्रदर्शनी में भागीदारी के दौरान कई खाद्य उत्पादों के आयात पर बात की गई, जिनमें खाद्य तेल और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ शामिल हैं। मॉरिशस और भारत के बीच नया ऊर्जा समझौता आज अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति की गई ईंधन की पहली खेप लेकर एक जहाज आज दिन के करीब 1 बजे पोर्ट लुइस बंदरगाह पहुंच रहा है। और आज मनाया जा रहा है आयुर्वेद दिवस।

0: आयुर्वेद में प्राकृतिक जीवन शैली, पौष्टिक आहार, योग, ध्यान और औषधीय पौधों के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विदेश में न्यूयॉर्क में जहां कल से संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र चल रहा है, शाकुस द्वीप समूह मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप और एंडी बरहम के बीच हुई पहली आमने सामने की मुलाकात में प्रमुख विषय रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद बाहर निकलते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर शाकुस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने की योजना पर अपनी असहमति सार्वजनिक रूप से जाहिर की। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। अवनी मुताई लाबुत में 78 साल की 78 years old श्रीमती विल्दिया गोरीबा, श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाशी नाम चेदी और जिन्हें लोग जेल नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान अवनी मुताई लाबुत से उठाकर सैजोज लुई सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On NBC Play and NBC.mu. Retro Rhythm.
2: RM2. Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: 12:08 हुए हैं, आप से भी खूबसूरत आपकी अंदाज है। गुड आफ्टरनून रेट्रो लवर्स, रेट्रो रिदम में आपका स्वागत है। इस नमनी नाज यूजुअल पहले आओ में होने वाला है आपके लिए थोड़ी पीसफुल गाने जो है वेरी सूदिंग और फुल नोस्टैल्जिक। तो अगर आप काम कर रहे हैं, अभी लंच के बाद थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, या सिंपली आँखें बंद करके एक छोटी सी पावर नैप लेने का मूड कर रहा है, तो बस वॉल्यूम को कम्फर्टेबल रखिए, बाकी काम गानों को करने दीजिए। 2 बजे तक इट्स योर रेट्रो रिदम, RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम दो नैना और एक कहानी। वैसे आंखों से कितनी चीजें बयां होती है ये आपसे बेहतर कौन जाने। कुछ गाने ऐसे होते हैं कि सुनते ही लगता है जैसे वक्त थोड़ा स्लो हो गया है। एक पुरानी याद, एक चेहरा, एक जगह, सब कुछ एकदम सामने आ जाता है ना। तो चलिए एक और ही ऐसी मेलोडी के साथ थोड़ा रिवाइंड करते हैं उन खूबसूरत मेमोरीज को आपके ही रेट्रो रिदम में विद एल मनी।
1: रेट्रो रिदम RM2

वैसे गाने में क्या लाइन है, खूबसूरत आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब का फिल्म यानी कि मूवी चौकीदार से। 1974 के इस फिल्म में संजीव कुमार, योगिता बाली और विनोद खन्ना जैसे बड़े नाम नजर आए। गाने की बात करें तो उसमें क्या टाइमलेस विचार है, दुनिया किसी एक इंसान की जागीर नहीं और शायद इसलिए रेट्रो सॉन्ग्स की बातें भी कभी पुरानी नहीं होती है। तो और भी ऐसे अमेजिंग खूबसूरत गाने हैं जो आपको जल्द ही सुनाने वाले हैं, तो आप बस जुड़े रहिए आरम

0: गारे गारे
1: ये गारा बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गया गारे गारे
1: ये हमको बटका गया
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो
2: ये कचतुर अनार हम छोड़ेगा नहीं जी ये कचतुर अनार हम पकड़ कर रखेगा जी।

0: चतुरा घोड़ा, ये क्या रहा घोड़ा चतुरा, घोड़ा चतुरा एक पे रहना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला का?
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे कुछ गाने इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि पहले 2 सेकंड से चलते ही दिमाग बोलता है हाँ हाँ ये वाला तो मुझे आता है, और फिर लिरिक्स से चाहे गलत हो कॉन्फिडेंस 100% से हम गा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने रेट्रो लवर्स कनेक्टेड है अभी हमारे साथ। जना जी है फ्लैग से और एज यूजल वो गाना मांग रहे हैं अपनी ब्यूटिफुल बेटियों के लिए। रीमा, जनिता, आशेषता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सुसरन फैमिली जो कि फ्लैग से है। एंड ऑल्सो वी हैव आज है पूनम हिंचू जी का बर्थडे, विशिंग हर वेरी हैप्पी बर्थडे सभी हिंचू परिवार जवाली रामदन फैमिली की तरफ से। वी हैव हमारे बड़ी यालेश जो कनेक्टेड हैं और वो नेक्स्ट ऐसा गाना सुनना चाहते हैं मूवी वादा रहा से, तो ढूंढ कर चलाएंगे जरूर आपके लिए। एंड ऑल्सो वी हैव अब्दुल जी, सारा बानो जी जो कनेक्टेड है हमारे साथ एज यूजल। एंड वी हैव अनदर मैसेज इस बार रानी जी की तरफ से, और वो डेडिकेट करना चाहते हैं ब्यूटीफुल सा गाना अपने हस्बैंड के लिए।

0: एंड ऑल्सो वी हैव आप है फिया जी और आप कोई भी गाना मांग रहे हैं अपने लिए, तो चलिए हो जाए नेक्स्ट गाना आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Good afternoon, it's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
4: नमस्कार निर्मनी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन की शुरुआत हुई। महासभा में नेताओं के पहले ही भाषणों से माहौल टकराव वाला हो गया। ब्राजील और अमेरिका के बीच एक दूसरे पर आरोप पत्र प्रत्यारोप लगे। गाजा और यूक्रेन के मुद्दों पर गहरी असहमति साफ नजर आई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। आज सुबह एबेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएमएम के नेताओं ने पार्टी की 57वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत कर दी है। मुख्य कार्यक्रम इस रविवार को रिजवी के ऑडिटोरियम में होगा। एमएमएम के नेताओं ने 1969 में पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वक्ताओं ने संघर्षों और राजनीतिक परीक्षणों से भरे पार्टी के इतिहास पर भी चर्चा की। ये बड़ा जुटाव इस विषय पर आधारित होगा, कल आज कल कर्तव्य और जिम्मेदारी। और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन के पास एक आवासीय इमारत में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हमलावरों कामाकुटा टाउनशिप में एक घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 14 लोगों पर गोलियां चला दी। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में चोटों के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Retro Rhythm
0: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: साथ तो वैसे ही छोड़ने वाले नहीं है दो बजे से पहले। एंड यस, गुड आफ्टरनून रेट्रो रिदम की सेकंड और आखिरी आओ में फिर से स्वागत है आपका। रेट्रो मेलोडीज में आपको फुली इमर्स करने वाले हैं, तो साथ में गाना जरूर वाइब करते रहते हैं, साथ में आरएमजू वीडियो मस्ती पर ही। इट्स नर्मनी दो बजे तक
0: रेट्रो रिदम
2: आरएमजू रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: किशोर कुमार के गानों से मस्त वाइब आ गया ना, अभी के लिए थोड़ा आंखें खोल दीजिए क्योंकि रेट्रो रिदम का मूड वैसे ही चेंज हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि पहले आवर में हमने रिलैक्स किया, मेमोरीज को रिवाइंड किया, लेकिन अब बस सेकेंड आवर में

0: वॉल्यूम को थोड़ा अप, मूड को थोड़ा और अप कीजिए और नॉस्टैल्जिया को फुल पाव में आने दीजिए। तो रेडी हो जाइए उन गानों के लिए जो आपको लिरिक्स याद आए, तभी आप गा सकते हो हमारे साथ आरएमटी रेडियो मस्ती पर ही।
1: रेट्रो रिदम
2: आरएमटी रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: एंड यस सर, जो गाना हमने अभी भी चलाया है वो था स्पेशली देव जी की तरफ से उनकी लवली वाइफ के लिए। एंड साथ में हमारी कनेक्टेड है आपाडू फैमिली होशनुआ से, जो कह रहे हैं कि मौसम और शोर लाजवाब है। थैंक यू जी, कोशिश जारी है आपके लिए। शतुबनागर से ज्योति जी नेक्स्ट गाना मांग रहे हैं आशनी सुरेखा रेखा माधव फैमिली के लिए। रंभा जी डेडिकेट करना चाहते हैं बर्थडे सॉन्ग उनकी पोती आशी के लिए, जो कि 10 साल की हो गई है। बिग गर्ल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ। नानी की तरफ से विलनोआ से आज है रामदत्त जी का बर्थडे। बेस्ट विशेज उनकी पत्नी गीता की तरफ से, बेटी और होल फैमिली की तरफ से फ्रॉम लाहौजा। तो उन सभी के लिए जो आज मना रहे हैं अपना स्पेशल डे, ये गाना है खास आपके लिए।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे मस्ती तो कब से प्रेजेंट सर बोल रहा है और हम बस इग्नोर कर रहे हैं। एंड यस, मैजिकल टाइमलेस रेट्रो गाने आपके नाम ऑनगोइंग है रेट्रो रिदम में ही। एंड वैसे दिलों की बातें भी हो रही है और मस्त समा भी है। वैसे आपके यहाँ वेदर कैसा है? इज इट रेनिंग या फिर सनी सनी है? रेडियो मस्ती पर तो यहाँ मूड के लिए, हर मूड के लिए गाना है। तो इस बार एक इंटरेस्टिंग गाना उठ जाए फॉर यू जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ आरएम टू रेडियो मस्ती पर ही।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti Musti
3: Hello 9821026212 BPL Check Are 9820026235 Max Touch Check

0: इसी खूबसूरत गाने के साथ टाइम हो चला है फुमे नलमनीर से बाय है एंड मेरे बाद आने वाली है परी जो आपको एंटरटेन करने वाले हैं नए गानों के साथ एंड ऑल्सो लॉट्स ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स आर वेटिंग फॉर यू तो यही पर आप रहना कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती पर ही
1: रेडियो मस्ती एम टू पीएम सुनते रहो
2: एक लड़की थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार बरी, सभी को नमस्कार। न्यूयॉर्क में कल संयुक्त राष्ट्र के महासम्मेलन की शुरुआत हुई। महासभा में नेताओं के पहले ही भाषणों से माहौल टकराव वाला हो गया। ब्राजील और अमेरिका के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे। गाजा और यूक्रेन के मुद्दों पर गहरी असहमति साफ नजर आई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। आज सुबह इबेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएमएम के नेताओं ने पार्टी की 57वीं वर्षगांठ के जश्न की शुरुआत कर दी है। मुख्य कार्यक्रम इस रविवार को रिजवी के ऑडिटोरियम में होगा। एमएमएम के नेताओं ने 1969 में पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार समर्थन देने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वक्ताओं ने संघर्षों और राजनीतिक परीक्षणों से भरे पार्टी के इतिहास पर भी चर्चा की। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में शीर्ष ईरानी और अमरीकी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है और उसी दिन अमरीकी नेता ने कहा कि यदि संघर्ष का समाधान नहीं हुआ तो वो इस्लामिक गणराज्य को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। जून में हुए संघर्ष विराम के टूटने के बाद पहली बार हुई इस बैठक में कोई सफलता हासिल होने की खबर नहीं है। कतर की मध्यस्थता में हुई इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
7: More music in the mix.
8: Aaj azadi hai.
0: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Crikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: एंड वेल वॉम वेलकम हमारी सभी लिसनर्स का 2:07 हो गए हैं वेनसडे आफ्टरनून ऑलरेडी इन द मिड वीक. मैं हूँ परी एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं और आप भी हमारा इतने प्यार से साथ निभाते हैं. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आफ्टरनून टाइम. जो भी कर रहे हैं आप, काम काज तो चल रहे होंगे दिस आई नो, लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आज छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, जो भी है आपके प्लान्स, हमारा प्लान तो है दैट हम खूबसूरत गीतों से आपको एंटरटेन करें. आफ्टर सम ओल्ड सॉन्ग्स नाउ इट्स टाइम फॉर सम लेटेस्ट ट्रैक्स, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा तड़का जरूर लगा सकते हैं. सो फॉर नाउ वी हैव राजा मणि जी जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं और उनके 5 दोस्त जो काम करते हुए आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. सो गुड गुड विशेज हमारी सभी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्यारी प्यारी लेडीज को हुआ वर्किंग राइट नाउ एंड लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. सो लोड्स ऑफ करेज टू यू ऑल, काम करते हुए गानों को एंजॉय कर रहे हैं और कह रही हैं कि अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, उनके तो हम बड़े फैंस हैं. सो वेल अभी के लिए तो लेटेस्ट ट्रैक्स चला रही हैं हम, लेकिन वी कैन प्ले दिस वन श्योरली फॉर यू. सो एंजॉय दिस वन राजा मणि जी, आपकी 5 दोस्त एंड ऑफकोर्स फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2.

RM2 रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 2:27 और जैसे आप जानते हैं बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। सो बात करेंगे एक्टर अभिषेक बच्चन की, जो आजकल एक बार फिर सुर्खियों में है। और दरअसल इस बार उनके चर्चा में होने की वजह उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि उनका बदला हुआ लुक है। हाल ही में एक्टर यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL स्पोर्ट्स इवेंट्स का हिस्सा बने और वहां उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर अभिषेक का बदला हुआ लुक फैंस का ध्यान उनकी तरफ खींच रहा है। और तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके अंदाज को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। सो वायरल तस्वीरों में अभिषेक बच्चन का लुक पहले के मुकाबले काफी अलग नजर आ रहा है। ETPL के इवेंट में लीग को फाउंडर अभिषेक बच्चन नेवी सूट पहने नजर आए और साथ ही यहाँ पर उनके डार्क सनग्लासेस काफी स्टाइलिश लग रहे थे और साथ ही उनका जो हेयर स्टाइल है वो भी काफी डिफरेंट नजर आया, जो लोगों को काफी अच्छा लगा। एक और तस्वीर में अभिषेक बच्चन और रोहन गावस्कर बालकनी में खड़े होकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं एक और तस्वीर जहां पर एक्टर राहुल द्रविड़ क्रिकेटर

0: So well, that was a beautiful song, Mohammed Irfan and Neha Kakkar ki awazon mein ye gana tha aap sabhi ke liye jo is waqt saath de rahe hain hamara. So well friends, this Friday release ho rahi hai The One. Waise log kafi confused ho rahe hain because jis tarah se is film ka title likha hai, logo ko lagta hai it's written The We One, lekin nahi, iska naam hai The One. Aur isme nazar aane wale hain Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia. To ye jo film hai ye release hone wali hai this Friday on 25th of September aur ab release हो गया है इस फिल्म का ये गाना, so enjoy this one.
1: RM2 Radio Masti, feel the masti.
0: काफी मस्ती भरा गाना आकाशा एंड देव नेगी की आवाज़ें फ्रॉम द फिल्म द वन. चलिए एक बार फिर मस्ती भरा अंदाज देखने को मिलेगा तमन्ना भाटिया का. Enjoy this one. हमारे सब लिसनर्स जो दे रहे हैं साथ बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स एंड बी टाउन के लेटेस्ट ट्रैक्स आपके लिए. परी का साथ दिन के 4 बजे तक एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: Radio Musti.
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी। RM2
0: Radio Musti.

और चलिए दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर हम आ गए हैं बी राउंड की खबरें आप तक पहुंचाने। सो वेल, जैसे कि आप जानते हैं दैट इट्स योर बॉम्बे टॉकीज और बात करेंगे इमरान हाशमी और जनीलिया डिसूजा की अदाकारी में सजी फिल्म गन मास्टर G9 जिसका नया गाना अफसाना बना के अब रिलीज होने के लिए ऑल सेट है।

इमरान हाशमी और जनीलिया डिसूजा ने अभिनय किया है और इसे हिमेश रेशमिया और अजीज कौर ने आवाजें दी हैं। गाने के बोल हिमेश रेशमिया ने लिखे हैं और उन्होंने ही इसका म्यूजिक भी तैयार किया है। सो आई गेस वो जो कॉम्बिनेशन था इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया का, इट्स बैक वंस अगेन। हाल ही में इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर गान मास्टर जी नाइन के पहले गाने अफसाना बनाया आपने का टीजर पोस्ट करके गाने की रिलीज का ऐलान किया था और इसके एक दिन बाद आज ये जो गाना है रिलीज हो गया है और वेल सून विल बी प्लेइंग दिस गाना आपके लिए। और इस गाने को 2 घंटे में ही काफी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, करीबन 2 घंटे में इसको 3 लाख व्यूज मिल गए हैं। सो आई गेस द मैजिक इज बैक एंड यहाँ पर हम भी तो मैजिक बिखेर रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, उनके गानों का अलग ही क्रेज है और ऑफकोर्स ये जो मैजिक है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी के लिए तो उनकी एक और फिल्म जो कर रही है काफी अच्छा बिजनेस, दैट्स आवारापन 2। काफी कम बजट में तैयार हुई थी ये फिल्म और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों को इतनी पसंद आई। आई गेस दैट्स द मैजिक ऑफ इमरान हाशमी एंड दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक। सो ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। फॉर ऑल द लिसनर्स, थैंक यू सो मच। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़। मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक।

0: FM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विदिमा, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने AI का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ब्रिटेन ने अमरीका के साथ AI के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जबकि फ्रांस ने इस संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। बुधवार को पोर्ट लुई में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने मारी जेट कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल की एक नई भर्ती है, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार कर रही है। आज सुबह एबेन में MMM ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। दल के सदस्य MMM की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए, जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रेजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से MMM को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। MSM का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है। ये एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेने के लिए बनाई गई है, जिसने खुद 2024 में इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन की जगह ली थी। MSM के सांसद जूली शोंगो ने नेशनल क्राइम एजेंसी को स्थापित करने वाले विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने विशेष रूप से इस भावी एजेंसी के महानिदेशक की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। विदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के जाने से ठीक पहले भारत के कई स्थानों पर मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 24 राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। और मेक्सिको के तट पर पोलो तूफान तेजी से विकराल रूप लेते हुए प्रशांत महासागर में इस मौसम के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
3: Radio Musti.

0: संबंधम
1: रेडियो मस्ती योर नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन सुनते रहो।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज। 3:24 बात करते हैं गुरमीत सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म मिर्जापुर द मूवी, जो 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिससे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से बहुत ज्यादा प्यार मिला और फिल्म की कहानी से लेकर कास्ट तक सभी की सराहना हुई और इसका फायदा बॉक्स ऑफिस पर भी साफ नजर आया। अली फैजल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु स्टारर इस मूवी ने 19 दिनों में यानी कि 19 दिनों में 300 करोड़

300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया है और इसी खुशी में मंगलवार को मुंबई में इसकी सक्सेस पार्टी आयोजन किया गया और इस पार्टी में लगभग सभी एक्टर्स शामिल हुए और हर किसी ने अपने अपने स्टाइलिश अंदाज में एंट्री लेकर महफिल को लूट लिया। सो आपको बता दें फिल्म में गुंडू पंडित का किरदार निभाने वाले एक्टर अली फैजल ने सक्सेस पार्टी में धमाकेदार अंदाज में एंट्री ली। एक्टर ब्लैक रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए दिखाई दिए और उनको देखते ही वहां मौजूद लोगों ने कहा कि आपने फिल्म में भौकाल मचा दिया। साथ ही सक्सेस पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान बीना भाभी यानी कि रसिका दुग्गल और मुन्ना भैया यानी कि देवेंदु ने अपनी तरफ खींचा। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें वो पार्टी में एंट्री लेते हुए और गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई लोग इसे देखकर खुश हो रहे हैं और कुछ लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं। मिर्जापुर की सक्सेस पार्टी में देवेंदु अपनी वाइफ आकांक्षा के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। वहीं रसिका दुग्गल भी ब्लैक कलर की साड़ी और उसके साथ मैचिंग ब्लाउज में नजर आई और वहीं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। तो अभी के लिए मिर्जापुर फैंस यानी कि ओटीटी पर इसकी सीरीज हर किसी ने देखी हुई है और अब ये रिलीज हुई एज अ मूवी यानी कि मिर्जापुर द मूवी जिसने 19 डेज में 19 दिनों में कमा लिए हैं 300 करोड़ से भी ज्यादा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बात हुई है मिर्जापुर की तो उसी फिल्म का ये गाना हो रहा है वेरी पॉपुलर, द वेरी फेमस सॉन्ग ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब जिसे गाया मधुर शर्मा ने फ्रॉम द फिल्म मिर्जापुर द मूवी। एंजॉय दिस वन गोज आउट हमारे सभी लिसनर्स के नाम परी का साथ अंदाज़ योर बॉम्बे टॉकीज़ साथ रहेगा आपका और मेरा दिन के 4 बजे तक।

0: Bombay Talkies Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: सुबह 3:40 मंगलवार गुजरात में नेशनल

0: और उनके इन भक्तिमय पलों का वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। सो इससे पहले एक्टर ने इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवार्ड लेते हुए तस्वीर वीडियो शेयर किया था। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ग्वालियर के उस ममाज बॉय को प्यार और मुस्कान के साथ याद कर रहा हूँ, जिसने ऐसे माहौल में एक्टर बनने का सपना देखने की हिम्मत की जहां लोग ऐसे सपने पर हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार मैंने वो पल देखा और वो सपना देखने की हिम्मत की। उत्साह और घबराहट से अभी मैं सन्न हूँ और एक छोटे शहर के लड़के का सपना देश के हर एक्टर का सपना, बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, चंदू नहीं चैंपियन हूँ मैं। मैं कबीर सर और साजिद सर का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे बड़े पर्दे पर भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड चैंपियन मुरलीकांत पेटकर सर का किरदार निभाने की जिम्मेदारी सौंपी। ये सफर बहुत दर्दनाक था लेकिन इसका नतीजा रस मलाई जितना मीठा है और मैं एक ही समय में विनम्र और भावुक महसूस कर रहा हूँ। ही वॉज फीलिंग क्वाइट इमोशनल और साथ ही साथ पंडाल में दर्शन करते हुए कार्तिक ने एक पोस्ट भी शेयर किया। लालबागचा राजा से एक फोटो शेयर करते हुए कार्तिक ने लिखा कि मेरे सुख करता दुख हरता, शब्दों के परे मिला आपका आशीर्वाद, धन्यवाद बापा। सो यहाँ पर ये सारी तस्वीरें उन्होंने शेयर की। नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर आयोजन की तस्वीरें साझा की, अपने माता पिता के साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर की। इस बार उन्होंने लिखा, सबसे अच्छे लम्हे में अपने माता पिता के साथ। वहीं एक्ट्रेस यामी गौतम और एक्टर मामूटी के साथ भी उन्होंने तस्वीरें शेयर की। सो अभी के लिए लिविंग हिज बेस्ट मोमेंट कार्तिक आर्यन, जिन्होंने जीता है नेशनल अवार्ड।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
2: आज आजादी है
3: बॉम्बे टॉकीज़,
4: रेडियो मस्ती।
5: रेडियो मस्ती।

0: from Radio Masti.
1: And well, 23rd of September, it's a special day क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं triple celebrations. आज Mr. Daman अपना birthday celebrate कर रहे हैं. हमारी प्यारी सी मौसी जी आप भी अपना birthday celebrate कर रही हैं. And special birthday wishes to Sudevi celebrating her 60th birthday आज. Best wishes coming from Azagan, Karina, Ethan, Naveen, Shivangi. Jevin and Devina, सभी की ओर से गुरी गुड विशेज, ट्रिपल सेलिब्रेशंस, मिस्टर दामन, सुदेवी जी एंड मौसी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आप भी. सो स्पेशल विशेज ऑन योर स्पेशल डे, एंजॉय करें अपना खास दिन. स्पेशल विशेज रेडियो मस्ती टीम की ओर से. साथ ही यहाँ पर स्पेशल विशेज टू ऑल दोज जो आज ऑन 23rd ऑफ सितंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे. हैप्पी बर्थडे.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, दो घंटों से तो आप हमारा साथ निभाते आ रहे हैं और घड़ी की टिक-टिक इशारा यही कर रही है कि नाउ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। लेकिन गुड बाय कहने से पहले अभी भी कुछ गाने बचे हैं जो हम आपको सुनाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499124 पर। सो डाविसन लाल माटी से वेलकम करते हैं आपका, साथ दे रहे हैं आप। विजया जी आवारापन 2 का गाना सुनकर कहती है, ये गाना मेरे नाम, अरे वो गाना क्यों, सारे ब्यूटीफुल गाने आपके नाम, एंड आई डू विश यू आर फीलिंग लिटिल बेटर आज, और आपके लिए गुड विशेस पहुंचा रहे हैं, गेट वेल सून विशेस पहुंचा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स सेंडिंग लोड्स ऑफ लव। साथ ही यहाँ पर अब्दुल अंसायरा बानू, आप भी बन गए हैं हमारे म्यूजिकल हम सफर, गाना होगा आपके नाम, साथ देने के लिए शुक्रिया। वी हैव दारिन श्वेता रविश प्रीशा लवशा नपाडू परिवार ऑफ ओशनोआ कहते हैं, मौसम और शो दोनों लाजवाब और एंजॉय कर रहे हैं टाइम रेडियो मस्ती के साथ। ललिता जीतन आ गई है घर, काम खत्म और अब एंजॉय कर रही है रेडियो पर अपना मी टाइम। डेडिकेटिंग गाना सभी परिवार के नाम, गीता ज्ञानती वीना कुमारी सरोज संजय विजय और सभी जीतन परिवार एंड कुमार देवीचरण ऑफ पेबे आपके नाम भी नेक्स्ट डेडिकेशन। साथ ही यहाँ पर गाना होगा फॉर पापा दीवान मधु, आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए विशेस लेकर आई है वाइफ सीता, उनके बच्चे हैं रेशमा रूमा दीपा रति सचिन विरज किशन बॉबी लवीश ओजस्वी विद्या विक्रम एंड वशिष, सभी उनको विश कर रहे हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे। साथ ही यहाँ पर प्रीतम जी कह रहे हैं, काम खत्म घर पर आकर जैसे ही रेडियो ऑन किया आपकी आवाज सुनी, थैंक यू प्रीतम जी, सो गाना आपके नाम एंड फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वर्षा। साथ ही यहाँ पर डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, एंजॉय दिस वन।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Masti.
0: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: Time check exactly 4 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विद्यमा, आपको नमस्कार।
5: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। ये एक ऐसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने AI

0: का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। बुधवार को पोर्ट लुई में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मारी जेड कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल की एक नई भर्ती हैं, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। MSM ने आज अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। उनका कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है, लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठा रहा है। ये एजेंसी फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जगह लेने के लिए बनाई गई है, जिसने खुद 2024 में इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन की जगह ली थी। MSM के सांसद जूली शोंगा ने नेशनल क्राइम एजेंसी को स्थापित करने वाले विधेयक का विरोध किया है। और विदेश में इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त से अब तक देश में जंगलों में लगी भीषण आग के कारण लगभग 175,000 लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित हो चुके हैं। खांसी, ब्रोंकाइटिस और न्यूमोनिया जैसी गंभीर स्थितियों वाले इन मामलों में 40,000 से अधिक मामले छोटे बच्चों से जुड़े हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: NBC.mu Raftar Vibes Filmy Rides RM2

सुबह झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंग झिंगाटे से गाने के साथ आए हैं एक बार फिर आपका स्वागत करने। वेल दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर योर अवतार वाइब्स। ये वही टाइम होता है दिन का जहां पर साउंड ट्रैक जो है लाइफ का एकदम से चेंज हो जाता है। आफ्टरनून में काम करते करते जो सैड सॉन्ग वाला ट्यून है बैकग्राउंड में चलता है, लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं, जैसे ही घड़ी की टिक टिक इशारा करती है कि नाउ इट्स टाइम कि आप घर जा सकते हैं, तो साउंड ट्रैक एकदम से चेंज होता है और बैकग्राउंड में हैप्पी वाला ट्यून बजने लगता है। सो बस अभी तो यहाँ पर इसीलिए है ताकि गुड म्यूजिक के साथ हम आपको अकंपनी करें, ताकि आप गानों को सुनते हुए अपने डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे। सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए तो मैं हूं परी आपके साथ, लेकिन हंसनी विल बी जॉइनिंग इन वेरी सून। सो साथ देते रहिए, यह है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the musty.
2: एग्जैक्टली रुके रुके जिंदगी एक बार फिर चल पड़ी. एंड वेल फ्रेंड्स, मॉर्निंग में तो सब भागदौड़ में रहते हैं कि काम पर कहीं लेट ना पहुंच जाए, लेकिन काम खत्म होने के बाद रश किस बात का. आराम से एंजॉय करें अपने ड्राइव को, एंजॉय करें आसपास के नज़ारों को. आई नो अभी के लिए तो इट्स स्लो ट्रैफिक जहां पर बहुत सारी गाड़ियां हैं आपके आगे, सो आप आराम से ड्राइव करें, डेस्टिनेशन पर सेफली पहुंचे. एंड वी हैव योर बैक, वी हैव सम ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आपको अकंपनी करते रहेंगे. एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स. अभी के लिए तो बस ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम एंड साथ दे रहे हैं अभी. सो योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

0: 31 in the afternoon. Yes, आज का शो है all about midweek motivation and feel good music. Welcome in Raftar Vibes, जहां पर गानों में रफ्तार तो बिल्कुल होने वाली है, जबकि steering संभालने वालों के लिए रफ्तार नहीं जी, बल्कि focus ज्यादा जरूरी है. आपके साथ जुड़ गई है हंसनी और आपकी afternoon energy को boost करने के लिए ये जो musical सफर है आपके लिए बिल्कुल हम set करने वाले हैं. तो दोस्तों, सड़कों पर स्ट्रेस शुरू तो हो गई है, ये तो हमें पता है. जो लोग ऑलरेडी फंस गए हैं इन द डेंस ट्रैफिक फ्लो, आप सभी को कुराज, मेंटेन योर पेशेंस. और यहाँ पर रेडियो मस्ती आपका RM2 आपके साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ये तो है, ये तो हमारा काम है टू एंटरटेन यू, दिल को बहलाना विद म्यूजिकल सॉन्ग्स. चलिए अब बातों को थोड़ा सा पॉज देते हैं और म्यूजिक को वॉल्यूम जो है अप कर लेते हैं. दिस इज एक्चुअली रेडियो मस्ती, जहां पर आपका साथ रहने वाला है इन आवर रफ्तार वाइब्स. उम्मीद है कि ये सब कुछ अच्छा है. आज का दिन आपने अच्छे से बस बिताए होंगे, और अगर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मूड थोड़ा सा हेक्टिक हो गया है, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो हो गया है, स्लो हो गया है, तो कोई बात नहीं जी. यहाँ पर वी हैव गॉट अ डोज ऑफ म्यूजिक, जहां पर इत्मीनान से दिल जो है आपका हल्का हो जाएगा. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम एवरीवन इन रफ्तार वाइब्स.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती.

रेडियो मस्ती और बिल्कुल एनर्जी लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे। सो आज माय डियर फ्रेंड्स, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुड वाइब्स का चार्जर लेकर आया है अभी का रेडियो मस्ती। आज का मूड सिंपल है, नो स्ट्रेस, नो नेगेटिविटी, बस ढेर सारे स्माइल्स के साथ, म्यूजिक एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम ये जो शो है रफ्तार वाइब्स जो है ना, हम सजाते रहेंगे आपके लिए। कभी कभी ना यहाँ पे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, राइट? बस एक अच्छा सा गाना, किसी अपनों की एक स्वीट सी बात, या फिर घर पर हो तो एक कप चाय, कॉफी, ये तो तुरंट मूड को बदल सकती है। सो लेट्स ट्राई द मैजिक अराउंड, इट्स मिड वीक और आज की आफ्टरनून वाला जो सफर है उनको बोरिंग नहीं बनाएंगे। डेफिनेटली विल ब्रिंग सम म्यूजिक, मस्ती एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट गाने जो हम लेकर आएंगे अप टिल द एंड। आज बिल्कुल नो नेगेटिव वाइब्स को साइड में रखिए और गुड एनर्जी को फुल वॉल्यूम पे रखिए, ये तो हमने ठान ली है टू बी विद यू। तो इसके लिए आप सुनते रहिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लेकर आएंगे ओनली द बेस्ट टू एंटरटेन यू। यहाँ पर हंसनी है आपके साथ और इशारा है कि कुछ ही पल में हम अरविंद से मिलने वाले हैं टू गेट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।

0: Good afternoon, Apko. Good afternoon, RM2 listeners. The latest from the sports world.
1: से UEFA Nations League के मैच खेले जाएंगे. ग्रुप वन में अंडोरा माल्टा, ग्रुप टू में नेदरलैंड्स और जर्मनी के बीच मुकाबला, सर्बिया ग्रीस, लेश्टेनस्टाइन लिचुआनिया. ग्रुप थ्री में ऑस्ट्रिया इसराइल, कोसोवो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ग्रुप फोर में नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्टुगल, वेल्स. इंग्लैंड की टीम ग्रुप थ्री में है. कल इस शनिवार को सैटरडे मैच स्पेन के खिलाफ, वर्ल्ड चैंपियन स्पेन के खिलाफ तगड़ा मैच इंग्लैंड के लिए वेम्बले में. रियल मैड्रिड और फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियान एम्बापे ने कहा कि साल 2016 में जब वो 18 साल का था और मोनाको में खेलता था, तब वो लिवरपूल के लिए साइन करने के एकदम करीब था. उसकी माँ एंफील्ड रोड आई हुई थी. एंफील्ड रोड में आकर यर्गन क्लॉप से मिलकर वो बहुत खुश हुई और दोनों बहुत पसंद आए. वो चाहती थी कि एम्बापे लिवरपूल में आए. उसके लिए लिवरपूल ने एक प्राइवेट जेट फ्रांस भेजा था. एम्बापे का पूरा परिवार प्राइवेट जेट में आया. वहां बातें हुई, खूब खाया पिया, पर किलियान एम्बापे को मना नहीं पाए. एम्बापे खेलना चाहता था पेरिस सेंट जर्मेन में और वही हुआ. आर्सेनल

0: million pound sterling bonus. Arsenal को champion बनाकर Arteta अब यहाँ अपनी dynasty, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है. Premier League title जीतने के लिए favourite हैं. Transfer बाजार से कुछ खबरें. Manchester United और Liverpool Crystal Palace के left back Tarik Mitchell के पीछे हैं. दोनों टीमों में left back position में कमजोरी है. UEFA Women's Champions League के लीग स्टेज के मैच कल खेलेंगे. Manchester City और Bayern Munich के बीच मैच ड्रॉ. Inter Milan ने Hacken टीम को 1-0 से हराया. Arsenal की जीत एथलेटिक कुछ टीम के खिलाफ. Juventus 1 Benfica 2 Real Madrid 1 Paris FC 1. इधर Paris Saint-Germain 1 Real Madrid 1 Paris Saint-Germain 1. आज Chelsea Austria Wien. Barcelona, Paris FC, Servette, Lyon और OHL AS Roma. Asian Games की चर्चा करें. हॉकी में टीम इंडिया ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 16-1 से हराया. ये दूसरी जीत है. और चीन की 13 साल की जलपरी यूसीडी ने स्विमिंग में तीसरा गोल्ड मेडल जीता. इस बार 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले में 4th fastest in the world इस साल. एशियन गेम्स में ही क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष यानी मेंस कैटेगरी के प्रीलिमिनरी राउंड के मैच खेले जा रहे हैं. क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश की एंट्री होगी. इधर बीच सोकर कान 2026 के प्रीलिम्स के लिए कल मॉरिशस वर्सेस अंगोला ये ब्लू बे अरेना में खेला जाएगा. और प्रीबैम की बात हुई तो 2 और 5 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ फ्रेंडली मैच है, ये मॉरिशस में ही खेला जाएगा. So these are the latest from the sports world. I'll catch you again. Till then, take care. Bye-bye.
1: Thank you so much, Arvind.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Welcome to RM2.
4: Radio Musti.
3: North, South.
4: 103.5.
3: East, West.
4: 96.4.
3: Center.
4: 99.4.
3: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix.

0: afternoon time. It's a warm welcome on Radio Masti, my lovely people. Join us and of course aapko musical mood mein hum set karne wale hain. Of course it's Raftar Vibes hai, jahan par gaano mein raftar to ho hi rahi hai. Ek sabar kar ek super gaane hum lekar aa rahe hain to entertain you and to make it a bit more easy. Jitne bhi hamare dost phase hue hain in the traffic, oho aapke samne itni lambi line hai, kab ghar jana hai aur yahan pe manzil kafi door hai. ये तो सबका क्वेश्चन है, यहाँ पर कब हम घर पहुँचने वाले हैं, राइट? लेकिन जो क्वेश्चन है बस उनको कोने में रखेंगे, बाकी जो है हम बस यही गुजारिश करेंगे कि जो स्ट्रेस है उनको बस पीछे छोड़िए एंड आगे देखिए. आगे तो आपका फोकस है बिल्कुल ऑन योर ड्राइविंग और सुनने में अच्छे अच्छे गाने, और बाकी जो रह गए हैं स्ट्रेस उनके बारे में क्यों फिक्र करें. दिन भर के लिए कितना सारा स्ट्रेस आपने ले लिया है, सुबह से इतना सारा भागम भाग हो रहा है, बच्चों को तैयार करना, काम पर जाना, लंच प्रिपरेशन एंड ऑल. और अभी जो घर पहुंच गए हैं वो तो कहेंगे जो काम काज है वो तो बस जारी है. हंसनी बिल्कुल, जो हमारे लेडीज़ जो हमारे फ्रेंड्स डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं उन सभी को कोहाश. और यहाँ पर जा रही हैं स्टिल ऑन योर वे, तो कोई बात नहीं, अभी कुछ ही पल में आप पहुँचने वाले हो. सो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य जो है आप मेंटेन रखें विद द रेडियो मस्ती. और यहाँ पर म्यूजिकल सफ़र तो है ही कुछ ऐसा जहाँ पर हम अपनी दिल की बातों को बयां कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ है जो दिल कहना चाहता है और ऐसे में कहने से, शेयर करने से आपका दिल हल्का हो जाएगा. सो व्हाई नॉट, ये जो रेडियो मस्ती है ना, आपका हम सफ़र है, आपका हमदम है. हम बिल्कुल शेयर कर लेते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे दिल मुस्कुरा जाता है. तो यहाँ पर है हंसनी एंड बिल्कुल हम करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 5 4 9 12 94. वैसे थक गए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन हार मत मानिए. आराम करना और हार मानना ये दोनों अलग बातें हैं ना. सो जो हो गया है उसे हम बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आज है ना, जो आज आपके हाथों में है उसे ज़रूर बेहतर बनाया जा सकता है. सो पास्ट को छोड़िए और प्रेजेंट को एंजॉय करिए, जो हम लेकर आ रहे हैं द बेस्ट मिक्स म्यूजिक राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: Yes, B musical with the Radio Masti, and abhi we have got some dedications. प्यार से जहाँ पर आपने कुछ लिखा है, so we'll have some messages. Good evening, Hansini. Good evening to all the Radio Masti team. Hey, thank you so much and welcome. आप सब कैसे? हम तो बिल्कुल मस्त, जबरदस्त. जब ऐसे ऐसे गाने चलते हैं तो यहाँ पे शेनाज आई है, शेनाज जोगी from Rivière du Grand Port. आपका warm welcome. आपके लिए, सभी परिवारों के लिए एक जबरदस्त गाना of course बनता है. एंड नेक्स्ट मैसेज आया है फॉर अ बर्थडे बॉय जो आज अपना 10 साल मना रहा है और वो तो पेंडे पापा के रहने वाले हैं. नाम है रविंद्र भरोसा. हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, लॉट्स ऑफ गुड विशेस कमिंग फ्रॉम मामा प्रिया. पापा है प्रवीण, वी हैव दीदी रिया, दादी है एंड फूफू नानी चंद्रा, वी हैव मामी सरिता, कजिन आदर्श, आकाश, अशिका, मामू मंगल और सभी सजाना फैमिलीज जो मुसलमान सेंट एंड्रे के रहने वाले हैं. आए हैं रवीना को विश करने के लिए अ वेरी हैप्पी वाला बर्थडे. स्टे ब्लेस्ड, विश यू लॉट्स ऑफ गुड विशेस. घूमने जाएंगे फ्लैग जहाँ पर जना जी का साथ है. हेलो जी, आपका वार्म वेलकम. एंजॉय कर रही है वदर रेडियो मस्ती. अजीवा क्या बात है, आपका वार्म वेलकम है. यहाँ पर गाना सभी परिवार के लिए चल पड़ेगा. सभी सुसरन फैमिलीज जुड़ गए हैं ऑल द वे फ्रॉम फ्लैग जस्ट टू एंजॉय द म्यूजिकल शो. ये हुई ना बात परिवारों का जो स्पेशल टाइम है, हम शेयर कर लेते हैं विद आवर म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती. और ऐसे में आप जुड़ जाती हूँ जहाँ पर भी सो हमारी आवाज़ जाती है. शुक्रगुजार है हम कि आप अपने टाइम निकालते हो टू सेंड मैसेजेस ऑन 5499-1294. ये जो कनेक्शन है बस जारी है. इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक, इट्स ऑल अबाउट मस्ती, इट्स ऑल अबाउट आज का रफ्तार वाइब्स.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: Right, time for us to look more elegant and more classy. यहाँ पर एक सेगमेंट हो गया है फैशन टिप्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानने के लिए. तो आज आपने वार्डरोब से क्या चुना है, मे बी आज या फिर कल आप चुने वाले हो या फिर इसे शाम के लिए. यू हैव एन इवनिंग आउटिंग, सो व्हाई नॉट एक मरून वाला जो ब्लाउज है अगर वार्डरोब में है और कई दिनों से आपने नहीं पहना है, सो यू कैन ट्राई इट. सो माई स्वीट लेडीज, माई डियर वुमन्स, आज मरून ब्लाउज के बारे में कुछ है टिप्स जो हम आपको देने वाले हैं. सो कम्बिनेशन आप क्या रख सकते हो फॉर मरून ब्लाउज प्लस ब्लैक ट्राउजर्स अगर ये ऐड करेंगे अपने स्कर्ट या फिर जीन्स के साथ, तो आपका जो लुक है ना, वाह, एकदम क्लासी वाला लुक दिख जाएगा. मरून के साथ वाइट या फिर आइवरी या क्रीम कलर्स भी बहुत ही एलिगेंट लगता है. लेट्स से क्रीम ट्राउजर्स या फिर स्कर्ट के साथ मरून ब्लाउज एकदम एलिगेंट लुक देगा. सो अगर आप ट्राई कर रहे हो आज मरून वाला ब्लाउज तो ये बिल्कुल सेट होने वाला है ये कम्बिनेशन. और जीन्स के साथ कैजुअल आउटिंग के लिए ये मरून कलर का ब्लाउज आप ब्लू डेनिम जीन्स के साथ पहन सकते हो, पेयर कर सकते हो, और उसमें स्नीकर्स या ब्लॉक वाले हील्स के साथ भी जो स्टाइल है कुछ ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा और एकदम कंफर्टेबल भी अगर आप पहनने वाले हो स्नीकर्स अगर एक कैजुअल आउटिंग के लिए जाना है तो. गोल्ड एक्सेसरीज ये बिल्कुल फिट होता है, कम्बिनेशन एकदम मस्त होता है मरून कलर के साथ. मरून और गोल्ड तो कम्बिनेशन ऑलवेज रॉयल फील ही देता है. तो अगर आप चुनने वाले हो एक्सेसरीज, सो यू कैन चूज गोल्ड इयररिंग्स और एक छोटा सा नेकलेस और ब्रेसलेट के बारे में भी आप सोच रहे हो तो ये भी ऐड कर सकते हैं. इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा फेस्टिव या पार्टी वाला लुक क्रिएट कर सकता है. और न्यूट्रल शेड्स वाले आप हैंड

बैग चूज कर सकती हो, जैसे कि ब्लैक, बेज या फिर न्यूट कलर की हैंड बैग अगर आपके मरून ब्लाउज के साथ मैच होता है, सो वाई नॉट। न्यूट हील्स के लिए आप सोच रहे हो तो ये बिल्कुल एलिगेंट लुक देगा आपको। वाइट स्नीकर्स जैसे हमने आपको बताया है, इट्स लाइक फॉर कैजुअल एंड ट्रेंडी वाला लुक। तो बिल्कुल आज का टिप होने वाला है

0: आदमी लिमिट पे रहता है वो जिंदगी पर लिमिट पे ही रह जाता है।
1: लोग अपनी जिंदगी बनाते हैं, मैं अपनी जन्नत बनाता हूँ।
2: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, योर नंबर वन बलोड स्टेशन।

0: क्या बात है, हैप्पी हार्ट के साथ हम जुड़े हुए हैं वेदर रेड मस्ती एंड डेफिनेटली हम हैं आपके साथ ही टू शेयर द हैप्पीनेस, टू शेयर द ग्लो, द लाइट, द हैप्पीनेस, द पीस अराउंड एंड ऑल द पॉजिटिव वाइब्स जो यहाँ पर छाए हुए हैं. सो वी आर हियर अब लेकर आपके कुछ मैसेजेस. यहाँ पर ये जो अगला गाना है वो जाएगा सूरज भाई के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है फ्रॉम कैटबोन. वैसे आई वॉज ड्राइविंग लिसनिंग टू रेड मस्ती एंड गेटिंग सम कुराज. आज 24 आवर शिफ्ट शुरू होने ही वाला है कुछ ही पल में. सो विश यू ऑल द बेस्ट, कुराज टू यू, और गाना आपके लिए ज़रूर चल जाएगा. वैसे अगला गाना जो है ना विल प्ले इट फॉर प्रवेश एंड सुनंदना के लिए सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी आज. मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आप दोनों को. कीप शेयरिंग द हैप्पीनेस विद रेड मस्ती और खुशियां हम लेकर आए हैं आपके लिए. स्टे ब्लेस्ड. और एक छोटा सा गेट टुगेदर होने वाला है अपने दोस्तों के साथ और इसी के लिए प्रिपरेशंस जारी है जस्ट बाय प्लेइंग सॉन्ग्स ऑन रेड मस्ती गेटिंग सम मोर कुराज. ये तो बिल्कुल अच्छी सी बात आपने कही है. थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट. नेक्स्ट वन जाएगा फॉर बबीता के लिए एंड आई एम ऑलरेडी इन माई किचन एंड आज ऑलवेज जो है कई जिम्मेदारियाँ हमारी होती है स्पेशली मम्मीज़ के लिए. जब भी हम घर पर पहुँचते हैं तो जो हमारे बच्चे हैं वो बस कहेंगे मम्मी यहाँ पर डिनर कब रेडी होने वाला है. यस, ये तो घर घर की कहानी है जी. तो अपने बच्चों के लिए आप लेकर आई हो लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स. आई वॉन्ट टू से दैट माई टू सॉन्ग्स जो है वो मेरी जहान है. तो यहाँ पर आपके जो गुड फीलिंग्स है पहुँच गई है. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स. यहाँ पर चलेंगे कुंगुमा जहाँ पर सुया जी का साथ है. हेलो जी, कैसी हो? यहाँ पर बिहारी फैमिलीज के लिए एक गाना एंजॉयिंग द सॉन्ग्स और साथ में कुकिंग टाइम भी को आप एंजॉय कर रहे हो. दैट्स वेरी नाइस. तो खाने जो है और भी लजीज होने वाले हैं जी आज, और भी डिलिशियस होने वाले हैं क्योंकि इसमें आज आप कर रहे हो इतना सारा प्यार अपनों के लिए. सो जो हमारे परिवार इस समय जुड़े हुए हैं एंड स्टिल रीचिंग बैक होम, ड्राइव भी बाकी है. सो विश यू कुराज, ऐसे ही आप सेफ रहिए एंड बी म्यूजिकल हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Good evening, everyone. Check your time. Sham ke theek 6 baje hain. नमस्कार, शाम 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। न्यूयॉर्क में कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत शागस का मुद्दा चर्चे में रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस के साथ हुए समझौते का विरोध करते हुए इसे एक बेहद खराब डील बताया। उनका कहना था कि जेगो गार्सिया एक रणनीतिक सैन्य ठिकाना है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में वैश्विक विवाद सुलझाने के उपाय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा के मुख्य विषय बने हुए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बदलकर उसे सुपर इंटेलिजेंस के तौर पर रिब्रांड करने का फैसला आम किया। इंडियन ऑयल के ईंधन की एक पहली खेप आज मॉरिशस पहुंची। इसमें 9,047 मेट्रिक टन पेट्रोल, 10,202 मेट्रिक टन डीजल, 15,505 मेट्रिक टन जेट एआई और 4,933 मेट्रिक टन मैरीन गैस ऑयल पाया जाता है। इस आपूर्ति के बावजूद ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज पुलिस में नई भर्ती हुई कांस्टेबल मेरी जेड कैथरीन के साथ मुलाकात की, जिसे हाल में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री ने इन आक्षेपों की कड़ी निंदा करते हुए इस नौजवान अफसर के प्रति अपना समर्थन जताया। और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर में एक आवासीय इमारत में गोलीबारी की वारदात पेश आई है, जिसमें कम से कम 11 लोगों की मौत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा कि उन्हें मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी पहली आमने सामने की मुलाकात के दौरान एक कॉमन ग्राउंड मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र में विश्व नेताओं के इस वार्षिक सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में

0: मौजूद हैं। जुलाई में बर्नहम के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से दोनों नेता दो बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार इन वार्ताओं ने एक उत्पादक संबंध स्थापित करने में मदद की है। संघर्षों का समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा में भाषणों के मुख्य केंद्र बिंदु रही हैं। ये कैसी महासभा है जहां अमरीकी राष्ट्रपति ने एआई का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने का निर्णय लिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी महाद्वीप के लिए स्थायी प्रतिनिधित्व की वकालत की है। ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ एआई के क्षेत्र में रक्षा साझेदारी करने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जबकि फ्रांस ने इसी संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा करने की मांग की है। ये महासभा मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की अनुपस्थिति के लिए भी चर्चा में रही। कुणाल गोजी, आस्था गुबिन।
1: दुनिया में युद्ध और जलवायु संकट बढ़ रहे हैं, इसी बीच एआई के विकास को नियंत्रित करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए दुनिया के मौजूदा हालात की ये तस्वीर पेश की। अंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अब शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं। ऐसे समय में देशों को एक दूसरे पर अपनी निर्भरता समझनी होगी और मिलकर काम करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दुनिया को दो विरोधी गुटों में बंटने से रोकना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देने के कुछ ही मिनट बाद कहा कि उसके साथ बातचीत फिर से शुरू हो गई है। दूसरी ओर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रणनीतिक रूप से फिर खोलने के लिए अपनी शर्तें सामने रखी हैं। ईरान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एआई पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब आधिकारिक दस्तावेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगह सुपर इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका इस तकनीक के विकास को और समर्थन देना चाहता है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि बड़ी शक्तियां उन देशों के राजनीतिक फैसले तय नहीं कर सकती जिनके पास मजबूत सेना नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने 10 और 11 नवंबर को होने वाले पेरिस पीस फोरम के लिए निमंत्रण दिए। उन्होंने एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर भी जोर दिया।
2: On a laissé nos enfants et nos adolescents évoluer dans un système qu'on maîtrisait assez peu, qu'on apprenait à découvrir nous-mêmes.
1: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने एआई के सेक्टर में अमेरिका के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने अफ्रीकी देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट की मांग उठाई।
3: Institutions that do not reflect the people whose cooperation they require will eventually struggle to command their trust.
1: सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी ने छोटे टापू देशों की मुश्किलों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट और कर्ज का बोझ इन देशों पर भारी पड़ रहा है।
4: Do not seek strategic competition. We seek shared solutions.
1: उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय जलवायु आपदाओं के असर और उसकी भौगोलिक दूरी को भी ध्यान में रखना चाहिए।
0: एमएस टोम स्प्लेंडिड नामक जहाज बुधवार को पोर्टली में आकर लंगर डाल चुका है। इसमें देश के नए आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडियन ऑयल द्वारा पहुंचाई गई ईंधन की पहली खेप मौजूद है। इस खेप को प्राप्त करने के लिए व्यापार मंत्री बंदरगाह पर मौजूद थे। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने राशन वाले चावल की आपूर्ति को लेकर आश्वस्त किया है। एसटीसी का कहना है कि सफ़ेद लंबे दाने वाले चावल को खरीदने की उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण मॉरिशस के लिए कुछ खेपों के परिवहन में देरी हो रही है। वितरण सुनिश्चित करने के लिए एसटीसी का कहना है कि वर्तमान में हर दिन 2.5 किलो के लगभग 12,000 बोरी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में दुकानों को सामान पहुंचाने के लिए एक डायरेक्ट सेल्स यूनिट भी स्थापित की गई है। एसटीसी का कहना है कि उसने इससे

0: संबंधित शिकायतों के लिए एक हॉटलाइन शुरू की है। आज पोर्टवी में अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मेरी जेड कैथरीन से मुलाकात की, जो पुलिस बल में एक नई भर्ती हैं, जिन्हें हाल ही में सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ा था। सरकारी नेता ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अपना समर्थन व्यक्त किया। सरकार ऑनलाइन हमलों को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उपायों पर पहले से ही विचार कर रही है। सिंचा मुटु की रिपोर्ट।
1: अपनी वरिष्ठ अधिकारी इंस्पेक्टर पूनम कुपों के साथ नई भर्ती हुई पुलिस कर्मी मेरी जेड कैथरीन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और उनको लेकर की गई व्यक्तिगत टिप्पणियों की निंदा की।
2: इनएक्सेप्टेबल Mindjali pendant longueur pas qu'ils histoire qui fausse et je me fais très bien là hier sur supervisor puis j'ai inspecté ou même inspecteur ou pas puis dire qu'il me fait très bien donc ça me s'est encouragé et en même temps qu'il était qui action ou bien point d'ivoire.
1: मेरी जेड कैथरीन ने प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भी वे हिम्मत बनाए रखेंगी।
3: De votre salle, nous avons toujours gardé la tête haute et malgré toutes les difficultés, nous avons un petit bout de faire notre travail correctement.
1: Mary Jade Catherine ne hal hi mein Pop NAC police station mein apni training shuru ki hai.
0: सऊदी अरब का राष्ट्रीय दिवस कल मॉरिशस में मनाया गया। त्रियानो में सऊदी अरब के दूतावास द्वारा आयोजित एक समारोह में विशेष रूप से गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भाग लिया। ये अवसर मॉरिशस और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को उजागर करने का था। अब्दुल बुलाकी।
4: त्रियानो में संयुक्त अरब अमीरात राजदूतावास की पहल पर मॉरिशस में सऊदी राष्ट्रीय दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। कई महानुभाव मौजूद, जिनमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल। मौके पर अपने भाषण में मॉरिशस के लिए सऊदी राजदूत फैयज मिशेल अल्तमियात ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और लगातार विकसित हो रहे संबंधों पर जोर दिया। कई क्षेत्रों में सहयोग दर्ज, जैसे आर्थिक आदान प्रदान, निवेश, पर्यटन, संस्कृति और जनताओं के बीच संबंध आदि।
5: सऊदी अरेबिया एंड मॉरिशस एंजॉय वार्म एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन।
4: सऊदी अरेबिया और मॉरिशस के बीच लंबे समय से रिश्ते कायम हैं, जो दोस्ती, परस्पर सम्मान और समान हितों पर टिके हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात को खुशी है कि मॉरिशस में कई क्षेत्रों में कई परियोजनाएं साकार करने में अपना समर्थन और योगदान दे पा रहा है, जैसे कि स्वास्थ्य, जल, सामाजिक आवास, स्पोर्ट्स, राष्ट्रीय मूल ढांचा, शहरी विकास, मानवतावादी सहायता और राहत कार्रवाइयां। इस तरह मॉरिशस की जनता के कल्याण और मॉरिशस के विकास में योगदान दे पाया। समारोह के दौरान विरासत, परंपराओं और साथ में वहां टेक्नोलॉजिकल विकास की भी चर्चा हुई, जिनमें आर्थिक एवं डिजिटल परिवर्तन के सिलसिले में सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख किया गया। सऊदी कूटनीतिज्ञों के लिए ये तरक्की मॉरिशस के साथ रिश्तों को मजबूत करने का मौका भी प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं और पहल से साझेदारी और भी सुदृढ़ होने वाली है।
0: और समाचारों की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में कल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के बीच लगी पहली बैठक के अंतर्गत शागुस का मुद्दा चर्चे में रहा। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
4: न्यूयॉर्क में राष्ट्रसंघ महासभा के कार्यों में भाग लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने मंगलवार को अपनी सबसे पहली बैठक लगाई। मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच शागुस वापसी पर प्रमुख रूप से चर्चा। कुछ समय बाद प्रेस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मॉरिशस को शागुस द्वीप समूह पर प्रभुसत्ता लौटाए जाने की यूनाइटेड किंगडम के फैसले की निंदा की। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने जेको गार्सिया सैनिक अड्डे की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि मॉरिशन प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति को ये बताया गया था कि एक सुझाव के लिए सब कुछ किया जाएगा। इस मामले पर बरतानी प्रतिरक्षा मंत्री वेज स्ट्रेटिंग ने बीबीसी को दिए गए एक बयान में बताया, कि यूनाइटेड किंगडम की ओर से मॉरिशस को शागस वापसी के मकसद से तय समझौते की

0: फिर से जांच की जाएगी।
1: मॉरिशस की मौसम विज्ञान सेवाओं में एक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मौसम विज्ञान सेवाओं के कार्यकारी निदेशक ने 2027-2031 की रणनीतिक योजना पेश करते हुए घोषणा की कि इसमें नई चेतावनी प्रणालियां यानी अलर्ट सिस्टम शामिल होंगी, जिनमें इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग और जोखिमों का बेहतर संचार शामिल है। आयुर्वेद भारत की सदियों पुरानी चिकित्सा परंपरा है, जो केवल इलाज पर ही नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर भी जोर देती है। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर हेल्थियर टुमोरो विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन आज फिनिक्स स्थित आईजीसीआरसी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग ने किया था। इसमें राष्ट्रपति धर्म गोकुल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, मॉरिशस में आयुर्वेदिक चिकित्सकों और आयुष क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों ने हिस्सा लिया। अशिता रखो।
2: एक प्राचीन परंपरा जो आज भी प्रासंगिक है, आयुर्वेद में बीमारी से बचाव, स्वस्थ आहार और शरीर एवं मन के बीच संतुलन पर विशेष जोर दिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस कम प्रदर्शनी आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी एक अवसर रहा।
3: अब तक तो हम केवल ओपीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें तो इंडोर होगा यानी कि पेशेंट एडमिट होंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम उसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट भी देंगे, जाकि जिससे लोगों को उसका लाभ हो। नहीं तो अभी
2: प्राकृतिक उपचार और स्वस्थ जीवन शैली में बढ़ती दिलचस्पी के बीच मॉरिशस में भी आयुर्वेद को लेकर लोगों की रुचि बढ़ रही है।
4: आयुर्वेद हमारे पूर्वजों के साथ मॉरिशस में आया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद के बताए हुए पद्धति पर चलें, क्योंकि इनमें बताए हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, ये हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो आयुर्वेद में बताए हुए औषधियों का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चिकित्सक के मतलब एडवाइस पर हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम आयुर्वेद का एक तरह से जो सेवन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है।
2: कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद के क्षेत्र में योगदान के लिए दो हस्तियों को सम्मानित भी किया गया।
3: तो अलग अलग विषयों पे जो है आज हम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें डायलॉग डिस्कशंस होंगे, वेरियस पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स मिलके बैठ के जो है वो आयुर्वेद को कैसे मॉरिशस में और जो है वो मजबूत किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे।
5: मैं यही चाहूँगा कि ये सम्मान 1.2 मिलियन में, ये जो धनवंतरी है, एक छोटा धनवंतरी के रूप में 1.2 मिलियन के लोगों में प्रतिष्ठित हो। इसका मतलब आपके में एक ऐसी विद्या हो जो अरि के रूप में, एक एनमी के रूप में डिजीज को मारेगा, तो ये धन्वंतरी की खूब खूब एक विद्या है।
2: भारतीय उच्चायोग ने क्षेत्र में आयुष को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
6: हमारा स्वास्थ्य सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन और आयुर्वेदा का जो के बारे में जागरूकता फैलाने का जो हमारा प्रयत्न है, जो प्रयास है, उसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन का सिस्टम जो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये हम मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं पिच होता है, ये साथ के साथ पोजीशन होता है। और आयुर्वेदा में जो तमाम बेनिफिट्स हैं उससे हम एक हेल्दियर लाइफस्टाइल, एक अपनी डेली रूटीन्स, एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन सब में हमें बहुत बहुत फ़ायदा मिलता है।
2: वही राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने कहा कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी शामिल है।
7: विजय एंगेज एन कैंपेन डे सेंसिबिलाइजेशन विजावी ला पॉपुलेशन पोर की ला पॉपुलेशन कॉम्प्रेंड टू बन बेनिफिस की कैपेबल गाने ऑन यूटिलाइजेंट ले प्रोडुइट आयुर्वेदिक।
2: इस तरह ये आयोजन एक प्राचीन चिकित्सा परंपरा को सामने लाने के साथ साथ बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी बना।
1: आज सुबह बेन में एमएमएम ने अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। दल के सदस्य एमएमएम की 57वीं वर्षगांठ की घोषणा करने के लिए एकत्र हुए, जिसे इस रविवार 27 सितंबर को रिजवी के ऑडिटोरियम में मनाया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने अपनी स्थापना के बाद से एमएमएम को लगातार समर्थन देने के लिए जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। सदस्यों ने पार्टी की यात्रा और उन विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा की जिनका उसे वर्षों में सामना करना पड़ा है। इस जुटाव की अध्यक्षता पार्टी के कई नेता करेंगे, जिनमें आर्यन नवमारी, अजय गणेश और राजेश भगवान शामिल हैं। आज एमएसएम ने भी अपना प्रेस सम्मेलन लगाया। एमएसएम का कहना है कि वो धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ना चाहता है।

0: लेकिन साथ ही दल नेशनल क्राइम एजेंसी की स्वतंत्रता और उसके कामकाज पर सवाल उठाता है।
1: एमएसएम के अध्यक्ष जूलिय जॉगो ने हर एक नागरिक की स्वतंत्रता की इस नई एजेंसी और साथ में इस कानून की संवैधानिकता के संभावित प्रभाव पर प्रश्न उठाया।
2: Alors qu'il faut mettre un comité Djibouti, comité qui s'appelle Constitutional Review Commission, pour le travail, l'eau, la possibilité d'amendement constitutionnel, mais qui fait partie inclure ça l'amendement pour créer sa National Crimes Agency là.
1: इसके अलावा जूलिय जॉगो ने शागो इस मामले पर भी बात की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर भी टिप्पणी की। उनके मुताबिक 2 वर्ष बीत चुके हैं और जनता को इस मामले में पूरी सच्चाई जाननी चाहिए। अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई जिसमें एमएसएम की ओर से आयोजित 3 हालिया जुटाव शामिल।
0: और विदेश में दक्षिण अफ्रीका के शहर डर्बन के पास एक आवासीय इमारत में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात हमलावरों ने एक घर पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद 14 लोगों पर गोलियां चला दी। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोगों को अस्पताल ले जाया गया जहाँ बाद में चोटों के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल धूप खिली रहेगी लेकिन पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो पर दोपहर बाद को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 26, अन्य इलाकों पर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 5:58 पर सूरज उगेगा और शाम 6:06 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

बगन लीन बिलेरिविया सेश में 62 साल की 62 years old की श्री धनमराज ओजाइब जो काउस संजय दत्त नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी एवेन्यू मुतेला बुट में 78 साल की 78 years old की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाइशी नामची दी और जो जेल नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन की 11 बजे उनके घर एवेन्यू मुतेला बुट से उठाकर सेंट जॉर्ज दे सालिन की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM कौबम्बई नंबर दो वाकवा में 74 साल की 74 years old की श्रीमती सत्यवती गोपाल पैदाइशी नाम सोनू और जो साकुन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थे कल दिन के 12:30 बजे उनके घर कौबम्बई नंबर दो वाकवा से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 12:30 PM नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री काट्रोबोन में 95 साल की 95 years old की श्रीमती सतभामा हुला

0: पैदायशी नाम परन सिंह और जो राधिका नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे भुवन हुला के घर नंबर 85 वेस्टर्न बाउंड्री का ट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,

0: 27 PM, वॉर्म वेलकम ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पर फिर से हमारी मुलाकात शुरू हुई है और यहाँ पर थर्ड आवर तो बस शुरू हो चुका है। इट्स रफ्तार वाइब्स, जहाँ पर कुछ म्यूजिक, कुछ और मस्ती और थोड़ा सा आराम, फरमनी का टाइम बिल्कुल आ गया है। और जो भागा दौड़ी थी सिंस 4 PM अब कुछ कम हुई है डेफिनेटली, और घर जाने की जल्दी तो थी ही। और आई रियली होप कि सब सेफ एंड साउंड घर पहुंच गए होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बस कुछ रश कर रहे थे टू बी बैक होम, और घर पहुंचते ही इतना सारा काम उनके लिए बस रखा हुआ है। तो कुहाश आप सभी को। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बस अभी भी गाड़ी चला रहे हैं टू रीच बैक होम, तो यहाँ पर म्यूजिकल सफर जारी हम रखते हैं ऑन रेडियो मस्ती। एंड रफ्तार थोड़ा सा आप कम कर लीजिए और बेशक आराम से कुछ आप सुन लीजिए म्यूजिकल सफर जो आप लोगों के लिए हम सेट कर रहे हैं और तय करेंगे साथ साथ ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पर हंसनी है आज आपके साथ। रियली होप आज का सफर काफ़ी कुछ ईजी था, सुबह से जो हो रहा है आपके साथ सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर ऊपर वाले से प्रार्थनाएं हम करेंगे कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। सो कैसा लग रहा है आज का ये म्यूजिकल सफर? उम्मीद है कि चेहरे पर मुस्कान आ गई है, क्योंकि संगीत म्यूजिक की खासियत कुछ ऐसी ही होती है ना, बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाना। ये तो रेडियो मस्ती का काम है, म्यूजिकल सफर जो हम तय कर लेते हैं और वो भी रेडियो मस्ती के साथ। वैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं सुनते ही मन जो है हो जाता है खुश, मन हो जाता है शांत, और कोई खास वजह भी नहीं होती है, बस अच्छा लगता है टू लिसन टू ग्रेट म्यूजिक। तो इससे में यहाँ पर हंसनी की मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी फॉर रफ्तार वाइब्स आफ्टर 7 PM। मगर अभी आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है, सो ऑफकोर्स हम सभी का वार्म वेलकम करते हैं।
1: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती, your number one Bollywood station.

0: Welcome in the world of music once again. और यहाँ पर इट्स रफ्तार वाइब्स, लेकिन I really hope कि रफ्तार जो है कुछ कम हुई है और अभी you just enjoying some chilling वाला time, कुछ आराम फरमाने वाला time आ गया है with the greatest songs. अभी evening lounge भी तो होने वाला है, that will be with Ajay Divya. She is actually on her way. Divya वो तो थोड़ी देर के बाद उनसे हम मिलने वाली है, लेकिन अभी जो हमारे साथ है वो तो हमारे beautiful सी angel है. Hi Pari, welcome in the studio. कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ. और जैसे हमने कहा कि हमारा एमबीसी रेडियो जो है वहाँ पर काम तो चलता रहता है, बी इट RM2 RM3, तो यहाँ पर मुलाकात भी होती रहती है और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो हम आते रहते हैं मिलने के लिए.
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली परी इज हैविंग हर शो ऑन रेडियो मनोरंजन विद ग्रेट सॉन्ग्स एज वेल, तो यहाँ पर हम उनको सुनेंगे और वो हमें सुनने वाले हैं. ऐसा हमारा कनेक्शन होता है यहाँ पर. सो रियली होप ऑल इज वेल परी, एंड यहाँ पर कॉफी ब्रेक तो सबके लिए बनता है.
1: बिल्कुल जरूरी है.
0: सो आफ्टर द शो यहाँ पर कॉफी ब्रेक तो हम लेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे. भूख भी तो लगी है. दिव्या सुन रही है, सो दिव्या लेकर आ रही है डिनर सबके लिए.
1: बिल्कुल, वो हमेशा लेकर आती है. सो आई एम श्योर दैट शी इज लिसनिंग टू द सॉन्ग्स राइट नाउ ऑन हर वे, एंड वी आर वेटिंग फॉर द खाना.
0: या सो दिव्या आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आप पर, सो जल्दी से आ जाओ. तो यहाँ पर फुल मस्ती के साथ हमारा टीम हमेशा आपके साथ रहता है टू मेक यू फील हैप्पी, टू मेक यू फील ग्रेट. और जो हमारे दोस्त अभी किचन में है परी, वो तो बस बहुत सारा काम कर रही है, काम चला रही है, डिनर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट?
1: और प्रिपेयर करने से पहले भी एक टास्क होता है, ये सोचना एवरी डे कि क्या बनाना है.
0: क्या बनाना है, ये प्लानिंग होना जरूरी है. सब बुखार टू ऑल माई फ्रेंड्स टू अभी किचन में.

0: है एंड ऑफ कोर्स टू ऐड सम मोर लव टू ऐड सम मोर स्पाइस यहाँ पर हमारे गाने बिल्कुल ऑन रेडियो मस्ती स्टे वेल कनेक्टेड
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: तो सड़क पर है और ट्रैफिक में स्टिल आप बस अनगोइंग हम कहेंगे, फंसेंगे तो नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि लाइक इट्स अनगोइंग ट्रैफिक नाउ. तो परेशान मत होइए, गाड़ी अपनी जगह धीरे धीरे चलेगी ना, लेकिन आपका मूड हमारे साथ एकदम तेज चलेगा. ये तो हमारे गानों का कमाल होता है. हम तो कहेंगे ट्रैफिक कितना भी लंबा हो, अच्छा म्यूजिक रास्ते पर थोड़ा सा आसान जरूर बना देता है ना. तो ऐसे ही आप मुस्कुराते हुए साथ निभाते रहिए आप, क्योंकि जो गाने होते हैं वो तो मूड बूस्टर होते हैं. अगर आज किसी से यहाँ पर कोई नोकझोंक हुई है या फिर आज किसी ने आपको परेशान किया है तो उससे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. जिंदगी तो बहुत छोटी है ना, मुस्कुराइए, गाना सुनिए और अपने इस शाम को और भी बेहतरीन बनाने की बिल्कुल कोशिश कर लीजिए. बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो. दिस इज रेडियो मस्ती, जहाँ पर ये दोस्ती हमारी होती है, ये प्यार आपका होता है और इतने सारे मैसेजेस भी आते हैं. तो चलिए कुछ एक दो मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं. वी हैव सरोज फ्रॉम कालोजीन जो आई है टू शेयर द विशेस अपने प्यारे दामाद के लिए. ऑन दिस खास दिन लेकर आई है गुड विशेस अपने प्यारे दामाद के लिए फ्रॉम ममिलो सरोज फ्रॉम वाइफ अनिशा. साथ में है मैवा एंड अवियान और खास तौर पे लव है फ्रॉम डियर पेरेंट्स राजा एंड सरिता. सेंडिंग लॉट्स ऑफ गुड विशेस. हाय हंसनी, नमस्ते टू यू. नमस्ते जी, आपका वेलकम है. आज मनीष जो है सेलिब्रेट कर रहा है अपना जन्मदिन. लॉट्स ऑफ गुड विशेस लेकर आई है प्यारी सी वाइफ मेधा, बेटी श्रेया, बेटा आर्यन, जेदन, नील, शीतल, विकी, रिटीना, नितिन है, संगीता है और सभी डियर परिवार है फरमोदा ब्लॉश और ऑल द डियर वंस जो आए हैं टू कन्वे द विशेस और मनीष जी को विश करने के लिए अ वेरी हैप्पी बर्थडे. वी हैव गीता फ्रॉम लालवीस कथोबोन एंजॉयिंग द शो वेरी मच. और जैसे हंसनी आपने कहा है, इतना सारा काम होता है इन द किचन और ऐसे में रेडियो मस्ती इज हेयर टू कीप गिविंग द कुराज. ये तो है, बिल्कुल सही बात आपने कही है. वी आर हेयर टू बूस्ट अप योर मूड एज वेल एज द एनर्जी लेवल. जहाँ पर भी साथ जारी है, इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू. अगर अभी आपने रेडियो ऑन किया है, दिस इज आवर रफ्तार वाइब्स.
1: Your number one Bollywood station.

0: राइट माय लवली पीपल, यहाँ पर म्यूजिक मस्ती तो बस जारी हम रखेंगे और जैसे हमारा इशारा हुआ था कि वो तो आएगी और आ गई है ऑलरेडी शेस हियर. हेलो दिवी, वेलकम टू यू, विश यू अ ग्रेट इवनिंग.
1: थैंक यू सो मच हंसू एंड गुड इवनिंग टू यू ऑल, हमारे प्यारे प्यारे आर एम टू लिसनर्स को भी. इट्स ऑलरेडी 7:56 एंड इशारा तो शायद आपको मिल ही गया होगा कि हंसने के जाने का टाइम आ चुका है.
0: बिल्कुल, हमारे जाने का टाइम आ गया है और दिव्या का आने का टाइम, और वो तो लेकर आ रही है द बेस्ट और रोमांटिक सॉन्ग्स इन आज का इवनिंग लाउंज.
1: एंड रफ्तार वाइब्स में क्या गाने चले हैं, सुनकर मज्जा ही आ गया.
0: ऑलराइट माय लवली पीपल, सो यहाँ पर एंटरटेनमेंट बिल्कुल मस्त होने वाला है दिव्या के साथ अप टिल 9 PM. सो स्टे वेल कनेक्टेड, हम तो मिलने वाले हैं, जल्द ही मिलेंगे दोस्तों. तब तक के लिए स्टे सेफ. आई विश यू ऑल अ हैप्पी इवनिंग.

ही रब तू ही दुआ और बस क्या कहे, प्यार इबादत है और प्यार इतना पावन होता है, इतना पाक है कि बस प्यार से अगर आप इस ज़िंदगी को सवारे ना तो आपकी ज़िंदगी एकदम जन्नत हो जाती है. ट्रस्ट मी, इट्स सो वंडरफुल टू फॉल इन लव. कहते हैं ना कि व्हेन यू फॉल इन लव यू टेन टू बिकम अ बेटर पर्सन, और ये एकदम सही बात है क्योंकि जब सही इंसान से आप प्यार करते हैं तो आपकी जो अच्छाई है वो निखर कर एकदम से सामने आ ही जाता है और चेहरे पर जो नूर आता है इसके बारे में क्या ही कहें. वेल शाम के 7:07 हो चुके हैं. Welcoming you all once again in your evening lounge. कल मिलने का वादा किया था तो लो जी हम वादे के हिसाब से एक बार फिर से आप लोगों से मिलने के लिए आ चुके हैं. एंड आपसे मिलने की तमन्ना तो रोज रोज होती है और ये तमन्ना शायद दिल से कभी नहीं उतरेगी. एंड बस

0: ऐसे ही होनी चाहिए प्यार जहाँ पर ये कभी फेड ना हो, एंड हर एक मुलाकात शुड ऑलवेज फील लाइक द पहली मुलाकात, यानी कि इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, एंड स्पेशल तो क्या हम तो कहेंगे एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है, एंड इट्स योर मिड वीक मस्ती जहाँ पर आपको थोड़ा सा अभी चिलैक्स करने का मौका मिल रहा है. तो सिट बैक, रिलैक्स, ऑल द कूल म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ RM2 जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM. सो आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं 5499-1294.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। और क्या दिन, क्या रात, क्या शाम, जब प्यार होता है बस दिन और वक्त के बारे में कभी पता नहीं चल पाता है। और दिस इज द बेस्ट पार्ट कि बस आप वक्त को भूलकर बस प्यार को ही महसूस करते हैं। चलिए यहाँ पर अगला गाना गुजाओ टू ईच एंड एवरी वन कनेक्टेड विद अस। एंड यहाँ पर अगला गाना खासतौर से हम दरकेज करेंगे आपके नाम, आई गेस आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है, बस इतना ही लिखा है, हेलो दिव्या एंड प्लेजर लिसनिंग टू यू, थैंक यू सो मच एंजॉइंग द म्यूजिक एंड एडिंग टेस्ट टू आवर मील, विश यू अ ग्रेट इवनिंग विद लोड्स ऑफ लव। मे बी आपने लिखना चाहा होगा, बस आपका मैसेज इधर ही आकर रुक गया है। अगर आप अपना मैसेज एक बार फिर से हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो बेशक आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294। आप हमें WhatsApp पर ज़रूर अपना मैसेज एक बार फिर से भेज सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाना उन तमाम लोगों के लिए भी जो शायद इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आपका काम शायद कल सुबह जाकर ख़त्म होने वाली है, बट हम हैं आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स मैं तो 9 बजे तक हूँ, लेकिन 9 बजे के बाद भी RM2 रेडियो मस्ती पर नॉन स्टॉप ऐसे ही गाने चलते रहेंगे आप लोगों की खिदमत में। तो आई जस्ट होप दैट यू विल बी हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है टू फील लव एंड टू फील The magic of music.
1: Evening lounge.
2: Evening lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: ये सोचने वाली बात है कि जब किसी की मंजिल प्यार हो जाए तो मंजिल कितनी खूबसूरत हो जाती है, और ये मंजिल तय करते करते सफ़र भी कितना खूबसूरत हो जाता है when you have the right person next to you. कदम से कदम मिलाकर चलना भी एक तरीके का प्यार होता है. लास्ट टाइम हमने कहा था ना कि प्यार

इतना खूबसूरत है कि यू हैव टू एनहांस इट एवरी डे बाय एडिंग डेली डोज ऑफ योर लव एंड ट्रस्ट मी, आप जितना प्यार देंगे ना, प्यार कभी कम होने वाला नहीं है. इसलिए यू डोंट हैव टू शो अप ऑन बिग डेज, ऑन बिग ओकेजन्स, ऑन स्पेशल मोमेंट्स. आपको बस शो अप करना है ऑन ऑर्डिनरी डेज एंड ड्यूरिंग द लो डेज.

That was a beautiful, beautiful गाना, taken up from the movie Salami. And I just hope कि आप हमारे हर एक गीत को ऐसे ही enjoy कर रहे हैं. Wednesday evening बहुत ही खास होते हैं, अगर देखा जाए तो हर दिन खास तो होते ही हैं ही, but Wednesday आपको थोड़ी और ताकत देती है ताकि आप दो दिन और spend करें and while waiting for the weekend. तो I just hope कि आप बस weekend का इंतज़ार करते करते मेहनत से काम कर रहे हैं and शायद आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे और इस सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है. एंड चलिए इस मेहनत के साथ साथ don't forget the passion, the zeal. एंड कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपने सपनों के पीछे इतना भागने लग जाते हैं दैट लाइफ में हम इतने प्रैक्टिकल बन जाते हैं दैट वी टेंड टू फॉरगेट कि इमोशनल कैसे बनना है या फिर

0: कभी कभी इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट अवेलेबल टू पीपल. एंड अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है ना, तो आप बहुत ही आसानी से यू विल बी एबल टू रीड इन बिटवीन द लाइंस कि लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर कोई आपसे ये कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप तुरंत ही इसको कैच कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये शायद मुझसे कुछ छुपा रहा है या फिर छुपा रही है. ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि लाइफ में कभी कभी किसी के साथ कुछ शेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट व्हेन यू बिकम दैट स्पेशल पर्सन तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है कि लोग आपके साथ आए, आपके सामने आए और अपने दिल की बात रखे. सो ट्राई टू बी दैट पर्सन. सो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है एक बार फिर से. 8:09 हो चुके हैं, वेलकमिंग यू वंस अगेन. आपके मैसेजेस ज़रूर हम तक पहुँच रहे हैं, ये ना सोचे कि हमें मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं. ऑफकोर्स वी विल बी वेलकमिंग योर मैसेजेस थोड़ी देर में, लेकिन इन गानों के बाद.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: क्या बात है, जिनसे हम प्यार करते हैं उनका चेहरा तो हर तरफ नजर आ ही जाता है एंड उनकी तस्वीर बार बार देखने के बजाय आप उनको जरूर बताइएगा कि आप उनको किस हद तक याद कर रही है। चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए की ओर। हेलो दिव्या, लिसनिंग टू योर वॉइस, थैंक यू सो मच। और फाइनली आपका इनकम्प्लीट मैसेज हमें कंप्लीट मिला है व्हाट्सएप पर, और ये प्यार भरा मैसेज भेजने वाली है हमारी प्यारी सी शालिनी जी। थैंक यू सो मच, विश यू अ ग्रेट इवनिंग एज वेल विद लोट्स ऑफ लव। शालिनी जी, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए, टेक केयर एज वेल। हैप्पी बर्थडे टू माई प्रिंसेस प्रिंशा, सेलिब्रेटिंग हर 25th ईयर्स, बेस्ट विशेज फ्रॉम पापा उतानंद, मामा प्रीति, लवली लिटिल एंजल गेशनी फ्रॉम अमोरी। और यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यार से विश किया है, नमस्कार प्रणाम, आपको भी प्रणाम गायत्री जी, हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड एंजॉइंग द लवली सॉन्ग्स। एंड कहते हैं कि कैपेसिटी फॉर यूनिवर्सल लव इज़ रेयर एंड वंडरफुल क्वालिटी। एंड आप कहते हैं कि असली वाला प्यार बहुत ही अनकंडीशनल होता है, मतलब अनकंडीशनल का मतलब ही है कि लविंग विदाउट एनी कंडीशन, तो प्यार नोज नो लिमिट नो बाउंड्री एज वेल। तो आप कहती हैं कि डज नॉट सीज through disagreement or from disappointment, it allows forgiveness. Thank you so much Gayatri ji for your wonderful words, it means a lot. Pranam Divya, and happy birthday wala gana meri behan Roshni ke liye from Mila Ramdikar of Motai Blanche. Aapki pyari behan ko hamari taraf se bhi bahut bahut sara pyar, and a very very happy birthday. And also to all those celebrating their special day today, aapko bhi bahut bahut sara pyar. Chaliye 8:31 already, it's your evening lounge jahan par Divya ka saath hai till 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: You're listening to RM2 or Radio Masti.
1: बिल्कुल दोस्तों, जब प्यार होता है दुनियादारी किसको याद रहती है, इसलिए शायद इस गाने के अंदर कहा गया है कि भूल गई मैं दुनिया जब से प्यार हुआ है मुझको। तो चलिए, आई जस्ट होप कि आप कभी भी ये ना भूलें कि जब भी आपको प्यार होना, भले ही आप दुनिया को भूल जाओ, लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि प्यार से प्यारा कोई चीज़ नहीं है, और प्यार से ही आप प्यार को बढ़ते देखेंगे तो आपको और भी प्यार हो जाएगा। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इंक्रीजिंग द लव डोज एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट, और हम यही करने की कोशिश करते हैं रोज़ रोज़। आई जस्ट होप कि आप हर एक गीत को एंजॉय कर रहे हैं। दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM।

0: 8:56 already and thank you so much आप लोग 7 बजे से हमारा साथ दे रहे हैं and अगले गाने के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you हमारी और आपकी मुलाकात same time यानी कि 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच कल for your evening lounge जरूर आपसे मुलाकात करेंगे फिलहाल के लिए वापस जा रहे हैं एक बार फिर से प्यार से आने के लिए आपको entertain करने के लिए in your evening lounge तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत take care keep smiling शुभ रात्रि and bye bye
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

Hey, lovely people. Good evening. Namaskar. Pranam. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस निधु आपके साथ जुड़ चुकी है, जिसका हमें तो बेसब्री से इंतजार था. आपको भी थैंक यू सो मच. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती. व्हाटएवर यू माइट बी, स्टे वेल ट्यून्ड.

खुश दोस्त हमारे हम सफर बनने के लिए इस खूबसूरत तीन घंटों का सफर लेट नाइट ग्रूव्स में यस अभी से लेकर रात्रि के 12 बजे तक आई नो कभी काम पर होंगे कभी लेटे होंगे आराम फरमा रहे होंगे लेकिन रेडियो जो है वॉल्यूम भले ही आज की रात थोड़ा सा कम हो लेकिन सुन तो रहे हैं जरूर इन गानों का मजा तो ले रहे हैं जरूर द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ओनली फॉर यू इस सर्दीली रात को और खूबसूरत बनाते हुए नीतू के साथ

अभी तो मस्त चल रही हैं कुछ 90s, कुछ 2000, कुछ लेटेस्ट. रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. नाइट ड्यूटी पर हैं. हे बो कुराज दोस्त, बस हिम्मत ना हारिएगा. सर्दी का मौसम है, कहीं शायद बारिश भी हो रही होंगी, तो आप अपना ख्याल रखिएगा. और अभी तो एग्जाम टाइम है, हमारे कई बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं रिवीजन में लगे हैं. वेरी गुड, बो कुराज, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा. हैव सम गर्मा गर्म दूध या फिर गर्मा गर्म कॉफी और चाय, जो भी आपको पसंद है. आपके इस मूड को एकदम रोमांटिक बनाते हुए, बस आप अपने मूड को अपलिफ्ट करते हुए, हियर यू आर द नेक्स्ट गाना गुजार टू यू ऑल.

वैसे रात का समा है और ऐसे समा में खूबसूरत गाने तो बनते ही हैं, बॉलीवुड के गाने तो बनते ही हैं, अच्छी अच्छी बातें तो बनती ही हैं, गुड वाइब्स हमेशा जैसे कहते हैं गुड पीपल के साथ, तो गुड पीपल होना बहुत ही ज़रूरी है आज की दुनिया में। दोस्त लोग तो हैं लेकिन सच्चे साथी आप जैसे शायद ही हो सकते हैं। सुबह हो शाम हो आपके मैसेजेस तो बनते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच। सो द नेक्स्ट गाना गोज आउट टू यू ऑल माय डियर लिसनर्स। हो सके तो तालियां अपने आप के लिए बजा दीजिएगा एंड बस मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए चलिए हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं।

क्या गाना है और आवाज तो एकदम मधुर। ऑफ कोर्स यही तो है बॉलीवुड। और जब भी बॉलीवुड की बात करते हैं तो बी द गोल्डन एरा, बी द 90s, बी द 2000s, दिस न्यू एरा। हर किसी का अपना अंदाज, हर किसी का अपना स्टाइल। आवाज अलग हो सकती है लेकिन फीलिंग, अगर आप उसको फील कर सकते हो ना, तो वो है दिल से दिल तक का कनेक्शन। तो बस दिल की पुकार नीतू की ओर से टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। अभी अभी चून की है, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स।

नेक्स्ट आवर में पहुंच आए हैं ऑफ कोर्स. चलिए जी, ये गाना जो है आप सब के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो नींद तो आ रही है लेकिन सो नहीं पाते हैं. अक्सर होता है ना कि नींद इतनी बड़ी जबरदस्त आ रही है लेकिन जैसे ही आप लेटने को चले, सोने को चले, अब ताक रहे हैं ऊपर, यानी कि अब ताक रहे हैं सीलिंग ऊपर, नींद भाग गई है. अगर ऐसी ही बात है, अगर ऐसा ही सिचुएशन है आपके यहाँ भी, तो आई एम श्योर द नेक्स्ट गाना सुनकर शायद कुछ मूड बन सा जाए एंड हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आपकी नींद वापस आ जाए.

बॉलीवुड और ये जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। वैसे इंस्पायर होना बहुत ही जरूरी है लाइफ में अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो। यस, हमेशा कहते हैं कि अपने दम पर सब कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई पुश कर जाए आपके इमोशंस को, आपके फीलिंग्स को समझ जाए, आपकी भावनाओं को समझ जाए, तो लाइफ कितनी खूबसूरत बन जाती है। हम तो आपको समझते हैं एंड इस खूबसूरत रात को इस लेट नाइट ग्रूव्स में हम शामिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्त।

अंदाज भले ही अलग हो, आवाजें भले ही अलग हो, लेकिन हर रात को हम रेडियो मस्ती पर स्पेशल बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपसे यही कहना चाहेंगे, गम को भुलाकर जो बीत गया, वैसे आपका दिन कैसा रहा? गम खुशियां ये तो आती जाती रहती हैं, अपनी खुशियों को हम अपने हाथों में लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। गम आते रहेंगे और उदासी भी आती रहेंगी, लेकिन जिंदगी हंसने का नाम है। अपने गमों को भुलाकर जो बस आगे बढ़ता चला जाए ना, वो ही सच्चा बाजीगर है।

माय गॉड व्हाट अ लवली गाना. रियली होप आप इन गानों को एंजॉय कर रहे हैं इन लेट नाइट ग्रूव्स. रात्रि के 12 बजे तक आज नीतू आपके साथ हैं और बस जितने भी लोग वंस अगेन कार पर होंगे अभी अभी चून के ये हैं इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स एंड बॉन कुआज टू यू बोल. रियली होप ये गाने जो है सूदिंग सॉन्ग्स, गाने जो होती है बेस्ट थेरेपी होती है, है ना. तो बस हम यही कोशिश करते हैं कि जब भी आए ऐसे गाने आप तक पहुंचाएं जिन्हें सुनकर दिल को सुकून आ जाए, आपको आराम आ जाए.

थर्ड एंड अंतिम आवर में पहुंच आए हैं. यस, इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. क्या हाल है, केम छो माझा माँ. तो चलिए, यहाँ पर लैंग्वेज की कोई बाउंड्रीज नहीं है, हम भी सीखते हैं, सब सीखते हैं. बस आंखों में, दिल में प्यार की भाषा होनी चाहिए, म्यूजिक की भाषा होनी चाहिए. और ये जो भाषाएं हैं, प्यार, म्यूजिक, बस हमारा दिल इनको छू सकते हैं. अगर दिल साफ हो तो हर चीज साफ साफ नजर आ ही जाती है. तो माय डियर लिसनर्स, थैंक यू सो मच. हैव यू गर्मा गर्म चाय, पानी गर्म हो या फिर दूध, जो भी हो, इस रोमांटिक मौसम को और रोमांटिक बनाते हुए द नेक्स्ट गाना गुजार टू यू ऑल. एंड ऑफ कोर्स जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, शायद अपने ट्रांजिस्टर के जरिए, अपने मोबाइल फोन के जरिए, सो बिग थैंक

कैसा है, नाता ये कैसा है। वैसे गाना तो ये नहीं चलाया, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब दिल का रिश्ता। जी हाँ, ये जो रिश्ता है सालों से हम निभाते आ रहे हैं और आ भी, और ऐसे रिश्ते जो हैं खून के रिश्ते से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। कहते हैं ना कि खून से ज्यादा जो रिश्ता होता है वो और कायम रहता है और गहरा होता है। तो चलिए, खून का रिश्ता हो दिल का रिश्ता हो, हर रिश्ते को हम पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। दैट्स व्हाई हर रात आपके नाम ऐसे ऐसे गाने ले आते हैं जिनको सुनकर आपका मन गदगद खुश हो जाता है।

का समय है और ऐसी रात में काफी लोग जो हैं काम पर हैं बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कई लोग जो हैं सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर जैसे भी हो जो भी आप हॉस्पिटल्स में फायर ब्रिगेड्स सब यहाँ पर मिलजुल कर काम कर रही हैं सो हैट्स ऑफ टू यू बों कुराज और गट्स होनी चाहिए ऐसे रात में सबकी सेवा करते हुए तो आप सेवा कीजिएगा मेवा डेफिनेटली आपको मिलते रहेंगे और हमारी तरफ से ये प्यारे प्यारे गाने दिस वन गोज़ आउट टू यू बोल माय डियर लिसनर्स

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।